अभी आप सुन रहे थे जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, ताजमहल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं, गीत का बोल है अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आ रे आ रे आ रे।

अभी आप सुन रहे थे अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे, पांव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ताजमहल।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ताजमहल से आप सुन रहे थे पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। जिंदगी में हमेशा उस इंसान की कदर करो, जिंदगी में हमेशा उस इंसान की कदर करो जो अच्छे वक्त में आपकी खुशी में शामिल रहे और बुरे वक्त में आपका साथ दे। सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज़ फ्रॉम द मूवी अमन से हम पेश करते हैं और आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी।

0: टू एंजॉय एवर।
1: अभी आप सुन रहे थे सुराहिदार गर्दन कोयल सी है आवाज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नास। फ्रॉम द मूवी अमन से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। पुजारिन है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा प्यार मेरा।

नमाई दी मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पुजारिन से हमने पेश किए हैं मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा सागर से गहरा प्यार मेरा। गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह, गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती हैं रुके रस्तों की तरह। फ्रॉम द मूवी अपने हुए पर आए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैंने बुलाया और तुम आए। लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

हुए पराए हैं फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मैंने बुलाया और तुम आए। लता जी की आवाज़ में अभी आपने सुने हैं और म्यूजिक दिए हैं शंकर जय किशन जी। दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज़ है, फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हम पेश करते हैं, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हमने पेश किए हैं। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। एक गलत बात और एक अधूरी बात, एक गलत बात और एक अधूरी बात न जाने कितने ही रिश्ते तोड़ देती हैं। जिंदगी है क्या, सुन मेरी जा, प्यार भरा दिल मीठी जुबा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माया से आप सुनेंगे और म्यूजिक दिए है सलील चौधरी ने।

फ्रॉम द मूवी माया से हमने पेश किए है जिंदगी है क्या सुन मेरी जा प्यार भरा दिल मीठी जुबा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। वक्त है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन ये गीत पेश करने से पहले एक बात बोलूं, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातें पहचान सके, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातों पहचान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह।

अभी आप सुन रहे थे हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, फ्रॉम द मूवी वक्त से हमने पेश किए हैं, आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में एक चीज़ तो कभी डिलीट नहीं होती, जिंदगी में एक चीज़ तो कभी डिलीट नहीं होती और वो है किसी की यादें। ये वादियाँ ये फिजाएँ बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आज और कल।

अभी आप सुन रहे थे ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे।

हरिओम। एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को सत श्री अकाल, हरिओम, हरि बोल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णदत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्त भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रात्रि का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। गीत और गजल और इस गोल संगीतकार का दास्ता नाम कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ यारो, यही आशा उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। जहां पर भी जिस हाल में हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ रात्रि प्रकट हो। मैं थील फील लॉइस्टर प्लेजीर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आपके सेवा और खिदमत में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चून है द प्लस रेडियो पर नतुलक उक्त बलैस्त्र फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाहुन एफएम चैनल पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाहुन हिंदुस्तानी के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यार, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में 23 कांतोर उरन ऑफ 07-365-2247। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। एनी तो फरखीत है उनसे क्वालिटी इस टू खरांसी एन अतुलिक नतुलिक नतुलिक फूलती से आउटेट लेकर दर बाय फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम सुना जो खास करके छोटा भाई यारो का यार जिगरी दोस्त महान अनाउंसर साथी द वन एंड ओनली करण सिंह जी ने आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया। जिस तौर तरीके से भाई करण जी हमेशा की तरह आप श्रोताओं को सेवा करते आया है, ये उम्मीद है फुल टीम की तरफ से कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद भाई करण जी, हमारे फुल टीम की तरफ से आपको भी एक शुभ रात्रि। अगर आपके घर पे खुशी का दिन एक जश्न मनाया जा रहा है, शायद आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं, विवाह संस्कार के तैयारियां में भी हो शायद लगे हो आप, जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को ढेर सारे बधाइयाँ ही बधाइयाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और ऊपर वाले से हम सब मिलकर पिंती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पर एक दुख का घड़ी आन पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और परमपिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को हमेशा की तरह सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। हिल फील स्टेरकते मैत्यू सिद्धिवाद से जो बीमार लाचार है, आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। जिंदगी के मजे जरूर रोजाना लेते रहना और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को भी खूब जोर तोर से सुनते रहना। फन हार्ट बीट शॉप। आप कामयाब हुए हो तो तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां हमारे फुल टीम की तरफ से, और अगर नहीं हुए हो बंधु तो चिंता के कोई बात नहीं है ना। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास, भरोसा, यकीन, सेल्फ फर्ट्रो जोर तोर से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो देखना कामयाबी कैसे दौड़ दौड़ कर जल्द से जल्द आकर आपके कदमों को चूमेंगे। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी यारो, नोइत अपखी फैबो तो खलेट। देश में प्रवेश हुए हो तो फूल टीम की तरफ से सुस्वागतम आपको फैन फकंसी एंड नतुलिक ब्लाइ फ्लाइ स्त्रनार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, यू गोन लाइक इट।
देश की छोड़ के देश आप विदेश यात्रा पे जा रहे हो तो फुल टीम की तरफ से आपको भी एक शुभ यात्रा। फेन वैकेंसी नतीजे तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को अपन वैकेंसी एड्रेस इंटरनेट के लहरों द्वारा द प्लस रेडियो के लहरों द्वारा तो आप भी सुनिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को अपने टैबलेट स्मार्टफोन और लैपटॉप सो बेंट यू फॉर ऑल्स ऑफ द होस्ट फॉर योर फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली द वन एंड ओनली देन हाक शेर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। तुम्हारे प्रिय श्रोताओं प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करता है आ रहा हूं वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एड फिल्म ललकार 1927 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को हमेशा की तरह सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आज गा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से यहाँ से कहते रहते हैं यारों की हैव टू नाश्ता होते लीफ कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर दगाकर आगे को बढ़ना है यारों खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे अति सुंदर प्रोग्राम लेकर आया हूँ। खास करके अगर आप पुराने नगमे पसंद करते हैं तो पुराने ज़माने के महान संगीतकार बेताज बादशाह के नाम से भी जाने माने जाते थे महान संगीतकार डिग्रेट मदन मोहन जी के कुछ नगमे लेकर आया हूँ और 10 से तकरीबन 11:30 बजे रात्रि तक आप सुनेंगे सिर्फ नगमे जिन मूवीज़ में महान अभिनेता डिग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं कुछ शेर शायरी भी है तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 11:30 बजे रात्रि तक चलेगा। तो जहां पर भी हो जिस हाल में हो हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि प्रकट हो। घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे और जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। रवि साहब आइए और सुनाइए।

Alo muskur alo mehfilis sajalo padmashri Muhammad Rafi sahab ji ke madhur awaz mein hamesha ki tarah program ka shuruaat tumhare priy shrotaon vaada ke mutabik ek hi dam lekar chalte hain aap sabhi ko karyakram ki taraf aur wo hai ek ati sundar program aaj ka is haseen ratri jo aap sabhi ke naam hai लेकर आ रहे हैं मशहूर गाने वाली हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के मधुर आवाज में फ्रॉम द पुराना मूवी बैंक मैनेजर। मेरा दिल बर हजारों में एक है, मिल के सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम मैस्त्रो मदन मोहन जी के साज पर।

Beautiful song, wonderful song by Queen of Rock and Roll, Asha Bhosleji, from the movie Bank Manager. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और इस बार लाते हैं आप श्रोताओं की सेवा में मशहूर गाने वाली भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी मिनिस्टर 1959 मदन मोहन के साज पर राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ अति सुंदर बयान उन आंखों में नींद कहां लता जी

Beautiful song by Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji, from the movie Minister 1959. Madan Mohan ji ke saaj aur sangeet par aur iti sundar bayan ko likha hai Rajinder Krishan ji ne. एक अति सुंदर बयान रख चुका हूँ आप श्रोताओं की सेवा में और सुनाने को जा रहे हैं इस बार द किंग ऑफ मेलोडी सुरों का बादशाह रफ़ी साहब जी. क्या आवाज़ है, क्या सजाया है ये नगमा को मदन साहब जी ने इतना फीलिंग से. महान लेखक राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान की मेरा पैगाम मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं. वन ऑफ माई फेवरेट रफी साहब जी का आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम मिलकर सुनते हैं.

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना दिया आप सभी को, सुरो का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। इट्स अ अनरिलीज सॉन्ग। तो प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं यारो, कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने आज़ादी, छुटकारा, फ्रीहेड के बारे में इतनी सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखकर चले गए हैं यारो। कुछ जीवित है और कुछ भगवान को प्यारे हो गए हैं, और ये इतनी सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये अशोमील लेकर के इन बातों से कुछ ना कुछ सीख तो हम लोग जरूर प्राप्त करेंगे, तो जरा गौर फरमाएं। कहकर गया है श्री योहान कास्पर लाफातेर, है वाज एन स्विट्जरलैंड थियोलॉग एंड मिस्टिकस, लीव्ड फ्रॉम 1741 टू 1801। और योहान कास्पर लाफातेर ने कहा है आजादी के बारे में यारो की, द फ्रीहेड ओम टू बेड्रेगन, te onderdrukken, te roven, te bedriegen, uit te zuigen, de moorden, dat is de vrijheid van de duivel. Een hele goeie hoor. Agemekaiser Dietrich Bonhoeffer, hij was een Duits kerkleider en verzetsstrijder, leefde van 1906 tot 1945. और डिट्रिख बोनहोफर ने कहा है फ्रीहेड आजादी के बारे में यारो की, गहोरसामहेड हैंडल्ड सोंडर टू फ्रागन, फ्रीहेड फ्रागत नार द बेटेकनिस। आगे में कही है श्री रोसा लुक्सेमबर्ग जी ने, ड्यूट्स मार्क्सिस्टिस पॉलिटिका एंड फिलोसोफ, लीव्ड फ्रॉम 1871 टू 1919। और रोसा लुक्सेमबर्ग ने कही है आजादी के बारे में यारो की, फ्रीहेड इज द फ्रीहेड फॉर द अंडर्स डेंकेंडन। नोग इंटे फॉर रोसा लुक्सेमबर्ग, ड्यूट्स मार्क्सिस्टिस पॉलिटिका एंड फिलोसोफ, 1871-1919। रोसा लुक्सेमबर्ग ने एक और कही है यारो, और वो कही है कि फ्रीहेड फॉर द अनहांगर्स फन द रेगेरिंग स्लेक्स फॉर द लीडन फन द पार्टे अल सेन से नोग सो टालरेक इस गीन फ्रीहेड। फ्रीहेड बतीकेंट इमर फ्रीहेड फॉर अंडर्स डेंकेंडन। आगे में कहा है श्री मैशियावेली, है वाज एन फ्लोरेंटाइन्स स्टाट्स फिलोसोफ, इटालियान दुस, leefde van 1469 tot 1527. Om Machiavelli nekha hij azadi ke bare mein yaro ki, als iemand de baas wordt van een stad die gewend is in vrijheid te leven en hij haar niet vernietigt, moet hij erop rekenen door haar vernietigd te worden. Hugo de Groot, hij was een Nederlands rechtsgeleerde en schrijver, leefde van 1583 tot 1645. Al Hugo de Groot nek ha hij azadi ke bare mein yaro ki, vrijheid is de macht die we hebben over onszelf. Broeder Roger van Thaizee, Zwitsers theoloog en oprichter van de Thaizee gemeenschap, leefde van 1915 tot 2005. O broeder Roger van Thaizee, ik ha hij azadi ke bare mein yaro ki, wat betekent vrijheid als het zelfzuchtig gebruik ervan de vrijheid van anderen aantast? Mahaguru Sri Buddha, hij was een spirituele leider, geboren als Siddharth Gautama, liefde van circa 370 voor Christus tot 450 voor Christus. Om Mahagyani Sri Buddha ne kaha hai azadi chutkara ke bare mein yaro ki,
ook een hele goeie hoor. Zoals de grote oceaan slechts één smaak heeft, die van zout, zo heeft ons onderwijs ook slechts één smaak, die van vrijheid. Eentje om in te lijsten hoor. Dag Hammarskjöld. Hij was een Zweeds diplomaat en van 1953 tot 1961 was hij VN-secretaris-generaal en leefde van 1905 tot 1961. O, dag Hammarskjöld, nikahai azadike barmiaruki. Vrijheid van angst zou een samenvatting van de hele filosofie van de mensenrechten kunnen zijn. En de laatste van vanavond, Kahe Malcolm de Chazal. Hij was een Mauritiaans, Franstalig schrijver en schilder. Leefde van 1902 tot 1981. O Malcolm de Chazal, Nikahe Azadike Barme Yaroki. De vrijheid om zichzelf te zijn is de hoogste vorm van rechtvaardigheid jegens de anderen. Ja, wat. Dan maar de peripineesje rotan. Ab je hebt kutje kahoute, udaharan suna. Jo azadi chutkara vrijheid ke bareme jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over vrijheid gaan. Je yasha umid lekker in batokome ab sebiko sunaya ke kuch na kuch sik to hamesha in bato se hum log sikhenge. तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. एक अति सुंदर बयान आप सुनेंगे. किस्मत जो पिलाए हमको. आई द फिल्म लड़का लड़की क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल वंस अगेन आशा भोसले जी मदन मोहन जी के साज पर.

Beautiful song Ati Sundar Bayan ay de film Larka Larki Madan Mohan Ji ke saaj par suna di aap sabhi ko Queen of Rock and Roll Asha Bhosle Ji. 31 सुंदर मजेदार आप सुनेंगे यारो. और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में म्यूजिक डायरेक्टर मशहूर गाने वाली द ग्रेट उषा खन्ना जी के मधुर आवाज में आई फिल्म लड़का लड़की 1966 कंपोज बाय मास्टर मदन मोहन. वो आ रहे हैं

Bersi rim-zim Queen of Melody Lata Mangeshkar ji ke madhur awaz mein ati sundar bayan aap shrutaon ne suna aaj ka is haseen karyakram mein jo special aap sun rahe the maestro Madan Mohan ji ka wo samapt hone ko aaya tabhi aap vigyapan sunenge देश विदेश का समाचार उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा स्टे ट्यून ऑन आप ही का आवाज है जनता का आवाज है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर एनाटोलिक उक्त ब्लॉज त्रिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर वर्ल्ड वाइड। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम में तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम। नैतिक वर्क्स बॉयज एंड बदंग, जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो जरूर अपने व्यापारी के बारे में, एक ऑर्गामान हो ऑर्गावुमन हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से ऐलान जरूर कराना यारो, किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी बेल तेनस कंतोर उर अपने 7 तक 3 5 6 2 2 7 40। जो भी रेडियो का काम हो, डेंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेन तुनो खेन लेत फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी 07 3 5 6 2 2 7 40 पर आप तार करें। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना। इट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू एंड हमारे फुल टीम की तरफ से तह दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम के तरफ। कुछ नगमे रह गया है फ्रॉम द मूवी तर्राना सुनाने के, तो एक ही दम एक बार फिर भारत रत्न लता जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे मुझे रूठ गए मेरा सांवरिया, अनिल दा के साइज पर।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है मुझे रूठ गयो मेरा सांवरिया फ्रॉम द मूवी तराना 1951 भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में अनिल दा के साइज पर। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं और एक और अति सुंदर बयान है ओम किपफेल फ्रॉम द क्रेग द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी एक बार फिर सुनने को जा रहे हैं आप सभी को एक मैं हूँ एक मेरी ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट तलत जी का स्पेशल

एक मेरी द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एड फिल्म तराना कंपोज बाय अनिल विश्वास जी। अब आप सुनेंगे पार्ट टू फ्रॉम द सॉन्ग मोसे रूट गयो मोरा सांवरिया। एक बार फिर लता जी द सेट वर्जन।

Ki Sundar Bayan Musi Root Gay Mora Savariya The Set Version Bhag 2 Queen of Melody Lata Mangeshkar Ji Ke Madhur Awaaz Mein Anil Biswas Ki Saaj Par From The Movie Tarana Tumhari Piri Piri Shrutaon Kuch Aakhri Shares Ho Jaye Hamare Shares Ki Chahne Walon Ke Liye Arz Kiya Hai Dosti Ke Naam Pe Aro Ki दोस्ती का पहला पैगाम आपके नाम दोस्ती का पहला पैगाम आपके नाम जिंदगी की आखिरी सांस भी आपके नाम रहे सलामत ये दोस्ती अपनी रहे हमेशा सलामत ये दोस्ती अपनी इसे सलामत रखना आपका काम है जिंदगी की हर अदा में याद रखना दिल की हर सदा में याद रखना यही तोहफा बहुत है मेरे लिए आपका यही तोहफा मेरे लिए बहुत है आपका खुलूस दिल से हर दुआ में याद रखना दोस्ती इंसान की जरूरत है दिलों पे दोस्ती की हुकूमत है आपके प्यार की वजह से जिंदगी है आपकी प्यार की वजह से जिंदगी है वरना खुदा को भी हमारी जरूरत है आंखें आपकी हो पर आंसू मेरे जिंदगी आपकी हो पर सांसें मेरी दिल आपका हो पर धड़कन मेरी जिंदगी की आखिरी मोड़ पर दुआ होगी यही है दुआ मेरी आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में यारो दीप तो आंधी में भी जगमगाते हैं दीप तो आंधी में भी जगमगाते हैं फूल तो कांटों में भी महकता करते हैं कितने नसीब वाले होते हैं वो कितने नसीब वाले होते हैं वो जिन्हें आप जैसे दोस्त मिला करते हैं क्या बात है जियो यारो तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं एक ही दम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ और एक दर्द भरी बयान है लता जी की मधुर आवाज़ में अनिल दा के साँच पर की वापस ले ले ये जवानी

दर्द भरा बयान वापस ले ले ये जवानी, फ्रॉम द मूवी तर्राना, मधुबाला जी के ऊपर ये अति सुंदर बयान पिक्चराइज किया गया है अनिल दा की सांच पर लता जी के मधुर आवाज में। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, फ्रॉम द मूवी तर्राना एक आखिरी बयान आप सुनेंगे और एक बार फिर महान गाने वाली, मेरे ख्याल से भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी एक ऐसा गाने वाली थी जो शायद भारत देश में कभी नहीं पैदा होगी। वो दिन कहाँ गए बता ऐ द फिल्म तराना, एक बार फिर लता जी अनिल दा के सांच पर uit 1951, een hele jonge stem van onze Nightingale.

क्या बात है, व्हाट अ वॉइस, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, और ये भी साथ ही साथ आखिरी बयान था इस फिल्म तराना अनिल विश्वास जी के मधुर संगीत पर। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, सभी गाने आप सुन चुके फिल्म तराना का, अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था ऑल्सो इन 1958, हलचल। और इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है मलकाए हुस्न द ग्रेट नरगिस जी के साथ, और साथ ही साथ उस जमाने के महान अभिनेत्री द ग्रेट सितारा जी के साथ। म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद शाफी के साज पर आप सुनेंगे सुरों का बादशाह रवि साहब और द नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी के मधुर आवाजों में। लागी है आग दिल में, क्या बात है वाह।

अति सुंदर बयान है श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। लागी है आग दिल में, ऐन फिल्म हलचल 1951 मोहम्मद शाफी सैयद हुसैन के साथ पर। सुना दिया आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी uit 1951। Wat waren hun stemmen toen nog jong, zeg. Tohari pribri shrutau, ye tak taj ka mere hisse ka karigram jo samapt hone ko aaya. Ye ashamil lekar ghar ko ja raha hoon ki jis tau tarike se main koshish kiya shrutaon ko seva karne mein, aap sabhi ko program pasand aaya hua hoga. अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूँ स्पॉन्सर किया हुआ प्रोग्राम लेकर, सरनामी संगीत, जिसमें पहला अध्याय बैठक गाना, दूसरा अध्याय कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और उसके बाद कुछ नए नए आवाजें फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का मनचाहा रेडियो स्टेशन है ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है। अब हमारे बात एक से एक कोली खास आप सभी को सेवा करने वाले हैं। खास करके शुरुआत करते हैं हम लोग महान अनाउंसर साथी भाई अमित कुमार जी के साथ, उसके बाद भाई दिलीप जी, भाई पवन है भी प्रोग्राम में, तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मज़े लेते रहना। मैं अंदर को लेखस और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो गुनगुना देता हूँ ना।

कौन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है दप्रिस रेडियो पर है नतीलक उक्त भलाइस्त्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन एफएम पिन चैनल पर यह कार्यक्रम आप श्रोताओं सुन रहे हैं। हमारी फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को भी एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतीलक बदंत हैं। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो, इवेंट ऑर्गेनाइजेटर, ऑर्गा मैन या तो ऑर्गा वुमन हो, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। द प्रेस रेडियो के लहरों द्वारा एंड इंटरनेट के लहरों द्वारा वर्ल्ड वाइड, तो आपका जो भी रेडियो का संदेश होना तमाम लोग सुनेंगे। सर्टिफाइड सिस्टम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफ़ायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलतेन काउंटोर यूरोप 07562 पर या तो आप तार करें अब 07362 पर। जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंतु नोखें लिट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों के बारे में आप लोग चर्चा करें कि जैसे आप सदियों से हम लोगों का प्रोग्राम कार्यक्रम को सुनते आ रहे हैं, आपके हिति प्रेमी रान परोस कोलेखवन और बिरमनवन भी सुने, तो हम लोगों के बारे में ज़रूर बातें शाते करते रहना और इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक ही दम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ यारो। और आप सभी को तो मालूम है कि बीते हुए इस हफ्ते मैंने सभी नगमे जो काफ़ी दिन लगा मुझे सुनाते सुनाते दिलीप कुमार जी के फिल्मों में जो एक्ट किए थे ना, सभी नगमे मैंने आप सभी को सुनाया। शुरुआत किया था अपना जो एक्टिंग का करियर है मैं द फिल्म वचन एंड है एंड द मैं द फिल्म कीला इन 1998। तो कुल मिलाकर 60 फिल्मों में दिलीप कुमार जी ने अपना अदाकारी पेश किया और सभी फिल्म्स के गाने मैंने आप सभी को सुनाया। तो अब लेकर चलते हैं एक और महान एक्टर अभिनेता द ग्रेट ग्रेट राजेंद्र कुमार जी, जिसे हम प्यार से जुबली कुमार के नाम से भी जानते हैं। तो उन्हीं महान एक्टर के फिल्मों के गाने आप सुनेंगे और आगामी में कुछ ना कुछ ये महान एक्टर के बारे में आप ज़रूर सुनते रहेंगे। तो एक छोटा रोल से शुरू किया था राजेंद्र कुमार जी अपना एक्टिंग का करियर में द फिल्म जोगन इन 1950 क्लाइन रोल गस्पील दरफोर हथी है ऑल्स असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर 5 साल तक वो काम किया और उसके बाद जब लोगों ने जोगन में उनका जो छोटा रोल था लोग ने बहुत पसंद किया एंड सैन खरूत दौर बराक वर्दर में द फिल्म वचन 1955। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्न गीता बाली दिलात द फ्रॉ फन शमी कपूर वर्द एंड ओक
बलराज सानी हीट ओकन दिस फिल्म गेस्पेल्ड। संगीतकार रवि है और चंद्रा मिलके ये दोनों ने इस फिल्म में सभी गाने पे अपना साज दिए। तो उसी फिल्म वचन से आप नगमा अब सुनेंगे और एक बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग है आप श्रोताओं के सेवा में मैं रख चुका हूँ प्लेयर में सुनाने के लिए। सुर का बादशाह किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब जी के मधुर आवाज में साथ दे रही है क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल अशा भोसले जी। मिल के सुनते हैं जब लिया हाथ में हाथ एवरग्रीन सॉन्ग स्पेशल फॉर हमारे सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Jebelia Heart Me Heart, a beautiful song from the movie Vachan, Ravi aur Chandra ne milke ati sundar song ko sajaya hai, aur gaane wale the Suro ka Badshah, Rafi saab aur Asha Bhosle ji. अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं. एक बहुत ही दर्द सा भरा हुआ बयान है. भीख मांगते हुए आप सुनेंगे कि रफ़ी साहब जी किस तरह से ये नगमा को गाया है कि जैसे खुद वो भीख मांगता है और साथ दे रही है अपत अनपार अल्फाजे अशा भोसले जी. वचन ने is the movie's names 1955 और उस फिल्म में तो काम किया है गीता बाली जी के साथ राजेंद्र कुमार जी ना, तो मिल के सुनते हैं.

एक पैसा दे दे दर्द से भरा हुआ बयान आई दो फिल्म वचन 1955 रवि शर्मा के साथ पर सुनाया आप सभी को सुर का बादशाह पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब साथ दे रही थी अशा भोसले जी। वो दिन कहाँ गए मेरे ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वचन कंपोज बाय रवि सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को अशा भोसले जी 1955।

दिल को छू लेने वाला दर्द सा भरा हुआ नगमा, वो दिन कहाँ गए। आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एड फिल्म वचन प्रेम धवन लेखक ये अति सुंदर बयान को लिखा, कंपोज बाय रवि शर्मा। इस जहां में हमें ऐसे जीना पड़ा, एक और दर्द सा भरा हुआ बयान आप सुनेंगे एक बार फिर आशा भोसले जी, कंपोज बाय रवि।

इस जहां में हमें फ्रॉम द मूवी वचन निहितिन 55 क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी का ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुना कंपोज बाय रवि शर्मा। अगला बयान है की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यारो कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ दोस्ती के बारे में शेर शायरी है यारो, डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई भाई भूपेंद्र जी ने भेजा है और लिखा है यारो कि दोस्ती क्या होता है, हमने तुम्हें देख के जाना। दोस्ती क्या होता है, हमने तुम्हें देख के जाना। दोस्ती क्या होता है, हमने तुम्हें देख के जाना यारो। तुम शायद हमें भूल जाओ, तुम शायद हमें भूल जाओ ए दोस्त, पर हमारे लिए मुश्किल है तुम्हें भूल पाना। क्या बात है। चेहरा भूल जाओगे तो शिकायत नहीं करेंगे, नाम भूल जाओगे तो गिला नहीं करेंगे। ऐ मेरे दोस्त खुदा की कसम, दोस्ती भूल जाओगे तो माफ नहीं करेंगे। आंखों में बसने वाला प्यारा सा इशारा हो, आंखों में बसने वाला प्यारा सा इशारा हो, अंधेरी रात में चमकता सितारा हो, छू भी नहीं सकती उदासी कभी उसको, छू भी नहीं सकती उदासी कभी उसको, जिसका कोई दोस्त इतना प्यारा हो तुम जैसा। गुजरे दिनों की भूली हुई बात की तरह, गुजरे दिनों की भूली हुई बात की तरह, आंखों में जागता है कोई रात की तरह। तुमसे उम्मीद थी के निभाओगे दोस्ती, तुमसे तो उम्मीद थी के निभाओगे दोस्ती, तुम भी बदल गए मौसम और हालात की तरह। होता है यारो, एक अलग पहचान बनाने की आदत है हमें, सखम हो जितना गहरा मुस्कुराने की आदत है हमें, सब कुछ लुटा देते हैं दोस्ती में, सब कुछ तो लुटा देते हैं दोस्ती में, क्योंकि दोस्ती निभाने की आदत है हमें। फूलों से खुशबू चुराई नहीं जाती, फूलों से खुशबू चुराई नहीं जाती, सूरज से रोशनी छिपाई नहीं जाती। कितनी भी दूर क्यों ना हो तुम, कितनी भी दूर क्यों ना हो तुम, ऐ मेरे दोस्त दोस्ती में आप जैसी दोस्त की दोस्ती भुलाई नहीं जाती। तो ये था कुछ शेर्स दोस्तों के बारे में जो मैं आप श्रोताओं को सुनाया भी, और ये डायरेक्ट यारों का यार भाई भूपेंद्र हमेशा की तरह भेजते रहते हैं मुझे डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई। अगला बयान यू ही चुपके, ब्यूटीफुल सॉन्ग एक बार फिर आशा भोसले और रवि साहब के मधुर आवाज में, ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे।

0: लाइक
1: यूं ही चुपके चुपके ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वचन 1955 रवि के आवाज में इस बयान आप श्रोताओ ने सुना, कंपोज बाय मास्ट्रो रवि शर्मा। अगला बयान एक बहुत ही माना जाना सॉन्ग है, बचपन से हम लोग ये गाने सुनते आ रहे हैं। और जरा खिड़की खोल के देख लो बाहर, शायद निकला होगा चंदा मामा दूर के। आशा भोसले की मधुर आवाज में आई द फिल्म वचन, कंपोज बाय रवि।

ब्यूटीफुल एवरग्रीन सॉन्ग सुनाया आप सभी को चंदा मामा दूर के आई फिल्म वचन रवि शर्मा की साक्ष पर प्रेम धवन का लिखा हुआ अति सुंदर बयान क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के मधुर आवाज। जरा सीख लो आंखियों से शर्माना, क्या बात है। एक बार फिर आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में रवि शर्मा का कॉम्पोज किया हुआ अति सुंदर प्यारा सा धुन, लेखक है प्रेम धवन इस ब्यूटीफुल सॉन्ग का। मिलकर सुनते हैं।

0: ज़रा सीख लो अंखिया शर्माना, अपनी पिया के याद में क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले। और ये था आखिरी सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वचन 1955, कंपोज बाय रवि शर्मा और लेखक था प्रेम धवन। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे फिल्म वचन का मैं आप सभी को सुना चुका। अब लेकर चलते हैं एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1975 तक में, फिल्म आवाज। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्न ब्यूटीफुल एक्ट्रेस नालिनी जसवंत जी के साथ। अनवर हुसैन भी इस फिल्म में काम किए हैं, मुकरी भी, और संगीतकार सलील चौधरी, सलील दा के सांच पर। लेखक है दो दो शैलेंद्र और प्रेम धवन। तो फिल्म आवाज से आप नगमे सुनेंगे, एक अति सुंदर मज़ेदार सॉन्ग आप सुनेंगे अभी। और सुनाने वाला है महान गायक हसीनों का पुजारी की शोरदा के मधुर आवाज में। और लिखा है अति सुंदर बयान को देखा जाए सिया सरहादी। मिलके सुनते हैं आरा राम तारा राम दुनिया के कैसे गम।
1: आरा राम तारा राम

कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

जान, लैला मांगे मजनू से दिल का लगान, कोई रोए दुख से लगाए कोई तान, एक मिस्टर शमशान जाए दूजा खबर

0: की कसम,
1: कहीं ज्यादा कहीं कम,
0: कहीं ज्यादा कहीं कम, अररम तररम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अररम तररम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा और कहीं
2: बहुत ही मजेदार सॉन्ग। किशोरदा के हरकतों और नटखटपन से तो आप सभी महफूज हो, और उन्हीं के अंदाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। द फिल्म आवाज 1956 कंपोज बाय सलील चौधरी, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप ट्यून है। गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जिनमें आप नगमे सुन रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता राजेंद्र कुमार जी ने काम किए हैं। तो हम पहुंचे हैं फिल्म आवाज जो रिलीज किया गया था 1956 तक में। मजबूर मोहब्बत ने फिर हमको पुकारा, ब्यूटीफुल सॉन्ग, और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में एक दो फिल्म आवाज नहीं थी सेशन फाइव तक सलील दा के सांच पर।

समय पे प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये रेडियो स्टेशन है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पर और तब लिस्टर फिया द प्लस रेडियो एनाटिलिक इंटरनेट के लहरों द्वारा वर्ल्ड वाइड 24 घंटे रोजाना लगातार जो भी रेडियो का काम हो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाइशों जरूरी खबरें या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार हो तो देखना कमाल ही कमाल हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। डिवाइस सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, जरूरी खबरें हो या तो फरमाइशें हो या अपने व्यापारी के बारे में, हम लोग कमर्शियल बनवा कर और जितने बार आप चाहे यारो उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफ़ायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ यारो कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑल इंडिया भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल अटेंडेंस कांतोर यूर ऑप 07-2-13-65-68-90। तो जो भी रेडियो का काम हो देंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने एकदम लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के तरफ यारो। और बीते हुए सप्ते में आप सभी को सुना दिया था फिल्म कब फिर मिलोगी जो 1974 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया था माला सिन्हा और विश्वजीत के साथ। तो सभी नगमे, तीन नगमे सिर्फ थे इस फिल्म में। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1976 में, फिल्म बैराग। और इस मूवी में दिलीप साहब ने अपने बीवी धर्मपत्नी मलकाय हुस्न सैरा बानो जी के साथ काम किया है। संगीतकार है द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। तो उसी फिल्म में से आप नगमे सुनेंगे। ब्यूटीफुल सॉन्ग छोटी सी उम्र में सुनने को जा रहे हैं आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी आनंद बख्शी के अल्फाज से और द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी के साज।

मर जाऊंगी छोटी सी उम्र में लग गया रोग, क्या बात है। जो फिल्म बैराग नहीं थी सेशन सेफ तक, दिलीप कुमार और सायरा बानो का ये ब्यूटीफुल मूवी में से ये सॉन्ग आप सुना। लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज में, आनंद बख्शी के अल्फाज से, और साज था द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी का। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, और इस बार एक मजेदार सॉन्ग है, पीते पीते कभी कभी यूं। आगे सुनिए एड फिल्म बैराग कल्याण जी आनंद जी के साथ, शुरू का बादशाह रवि साहब और क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के मधुर और ब्यूटीफुल आवाज़ें।

पीते पीते कभी जाम बदल जाते हैं, हो जाता है यारो। अनंत बख्शी के अल्फाजे कल्याण जी आनंद जी के साँझ और आवाजें थे कोरस और क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले और पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। सारे शहर में तुझ जैसा कोई नहीं है, क्या बात है, कैसा तारीफ है कि सारे शहर बंबई बहुत बड़ा। और दिलीप साहब कह रहा है कि सारे शहर में आप जैसा खूबसूरत कोई नहीं है, अपनी बीवी को कह रहा है। तो मिलके सुनते हैं आइडियो फिल्म बैराग, जो पति पत्नी ने मिलकर इस फिल्म में काम किए आनंद बख्शी के अल्फाजे और कल्याण जी आनंद जी के साथ रवि साहब और आयशा जी के आवाज़ें।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे भी हो तुम जैसे भी हो हम खुशी

सारे शहर में आप सा कोई नहीं। एडो फिल्म बैराग 1976 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, आवाजित है आशा जी और मोहम्मद रफी साहब जी का, और लिखा है अति सुंदर बयान को महान लेखक आनंद बख्शी जी ने। मैं बैरागी, क्या बात है, एक से एक अति सुंदर सुंदर नगमे। इस फिल्म में भी एक भजन फोर आया था और मैं आप सभी को सुनाने को चाहता हूँ। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, महान गायक पद्मश्री महेंद्र कपूर जी के आवाज में अति सुंदर बयान आप सुने, कॉम्पोज बाय कल्याण जी आनंद जी।

फिर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। फ्रॉम द मूवी बैराग निगरी सेशन सैफ तक पद्मश्री महेंद्र कपूर जी के मधुर आवाज में कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। अगला बयान के तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को हमारे प्रिय श्रोताओं, और इस बार आप सुनेंगे मैं बैरागी लेकिन मैं जोर जोर से नाचूं। एक फिल्म बैराग 1976 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, अल्फाज है आनंद बख्शी का और आवाज़े भारत रत्न लता जी और सुरों का बादशाह रफी साहब जी।

आप चुन है यारो गीत और गजल और इस गौर नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। वक्त हो चुका है कुछ शेयर्स हो जाए हमारे शेयर्स के जाने वालों के लिए। अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी कुछ दोस्ती के बारे में।

भुलाना गलत है, दोस्त को भुलाना गलत है, उन्हीं का जिंदगी भर साथ है। अगर भूल गए तो खाली हाथ है, अगर भूल गए तो खाली हाथ है, और अगर साथ रहे तो जमाना कहेगा क्या बात है। दोस्ती अच्छी हो तो रंग लाती है, दोस्ती गहरी हो तो सबको भाती है, दोस्ती नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर दोस्ती अपने जैसी हो तो इतिहास बनाती है। दोस्ती करो तो धोखा मत देना, दोस्ती करो तो धोखा मत देना, दोस्तों को बेवफाई का तोहफा मत देना। कोई तुम्हें रहे याद करके, कोई तुम्हें रहे याद करके, ऐसा कभी मौका मत देना। खुदा करे सलामत रहे किसी दुआ की तरह, खुदा करे तुम सलामत रहे किसी दुआ की तरह, एक तू और दूसरा मुस्कुराना तेरा। क्या Trust is like a mirror, trust is like a mirror, once you break it you can never look at it the same again. तुम हमेशा खुश रहो ऐसी दुआ है हमारी, और आगे बढ़ते रहो ऐसी दुआ है हमारी, तुम जहां भी हो जैसी भी हो, एक दिन हमें ढूंढ पाओ ऐसी ख्वाहिश है हमारी। तो था कुछ शेर्स आगे के प्रोग्राम में, कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने के। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं यारो, और जैसे मैं आप सभी को कहा ना कि सभी नगमे फिल्म बैराग का मैं आप सभी को सुना दिया, अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1981 में, और जबरदस्त कास्टिंग इस फिल्म में किया गया था, खास करके मनोज कुमार जी के डायरेक्शन में, और मनोज जी तो उसको प्यार से लोग भारत भी बुलाते हैं ना, तो जबरदस्त फिल्म था, ब्लॉकबस्टर मूवी। और इस फिल्म में दिलीप कुमार जी ने एक महान रोल अदा किया, और दिलीप जी के साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर द ग्रेट मनोज कुमार जी, साथ में हेमा मालिनी जी, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बाबी, प्रदीप कुमार जी, शशि कपूर, सारिका, क्या बात है, जबरदस्त स्टार कास्ट इस मूवी में था। तो इसी फिल्म में से आप नगमे सुनेंगे, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, और गाने सभी लिखे हैं संतोष आनंद जी ने। तो मिल के सुनते हैं ये एक सुपरहिट एवरग्रीन सॉन्ग, जो देखा जाए तो 26 मिलियन से ज़्यादा बार लोग सुन चुके हैं इस सुपरहिट सॉन्ग को। तो एक बार हम फिर भी आप सभी को सुना देना कि जिंदगी की ना तूते लड़ी, क्या बात है, स्पेशल आप सभी प्रिय श्रोताओं के नाम।

from the superhit movie Kranti. Mighty Mukesh जी का सुपुत्र नितेन मुकेश जी के मधुर आवाज में भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी साथ दे रही थी। महान लेखक संतोष आनंद के लिखा हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग कंपोज बाय एलपी लक्ष्मीकांत प्यारे लाओ। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं एक बार द सेम कॉम्बिनेशन क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और नितिन मुकेश जी मिलकर सुनाते हैं लोई शमाशा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर संतोष आनंद का अल्फाजे।

0: Chanajor Garam Babu uit de film Kranti 1981, a great composing by Mahan Sangeetkar Jori Lakshmikant Pyarelal, Mahan star and singing cast. Aur ye nagma aap sabhi ko sunaya Nitin Mukesh Ravi Sahab Lata Ji aur Kishore Da. To dosto, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। आप भी जाइए, कुछ इस्तेमाल कीजिए, चाय कॉफ़ी या जो आप पी रहे थे उसको बैफिल कीजिए, और साथ ही साथ विज्ञापन और देश विदेश का समाचार भी सुनते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत।
1: DAB Plus Radio, सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले DAB Plus Radio और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने। वाओ,
0: तुम्हारे प्रिय प्रिय साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार 1970, कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की। आज गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से यहाँ से कहते आ रहे हैं कि हैव टू नाश्त आउट एट लीफ, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे कुछ पुराने नगमे, कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम द लेट 40s 50s 60s टिल 70s, महान संगीतकार, शुरुआत में थोड़ा बहुत एक्टिंग किया और साथ ही साथ एक जबरदस्त बावर्ची था, कॉक भी था, और इतने मीठे मीठे धुने ये महान फनकार ने हम लोग के लिए बनाकर छोड़े हैं कि सदियों तक हम लोग मजे लेंगे लेकिन दिल नहीं भरेगा। और उसके बाद कुछ पुराने नगमे आप सुनेंगे जिन मूवीज़ में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, कुछ शेर शायरी है, तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो लव्स यू ऑल। रफी साहब

In the beautiful song from the movie Chowkidar, Mahan Sangeetkar, Madan Mohan ji ke madhur sangeet par aur alfaze the Rajinder Krishan ki awaze thi. Suru ka bacha Ravi Sahab ji, lakho crore ka dil churane wala damai thi Mukesh aur Queen of Rock and Roll Asha Bhosle. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और इस बार लाते हैं भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी जहां आ रहा हाले दिल यू उन्हें सुनाए गए. क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम.

Beautiful Gazelle, sung by भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, मदन मोहन जी के मधुर संगीत पर। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यारो, कुछ नगमे आप सुन रहे हैं महान संगीतकार मदन मोहन जी के बनाए हुए धुने। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और इस बार द पुराना मूवी अनपढ़ निगेटिंग ट्वीन सेस्तख है, इसी में प्यार की आबरू। जरा लफ्जों पे ध्यान दीजिए, महान लेखक राजा मेहदी अली खां के अल्फाजे मदन मोहन जी के साथ और भारत रत्न लता जी के मधुर आवाज। एंजॉय द म्यूजिक।

Beautiful song, masterpiece of composing by maestro Madan Mohan ji ki Hai Si Me Pyar Ki Aabru uit de film Anpar 1962 Malasina par ye picture gaya hua ati sundar song aur khas baat ye hai jab ye song nikla aur mahan sangeetkar Naushad Ali jab ne composing suna मदन मोहन जी का तो इतना तारीफ किया इस कंपोजिंग के बारे में कुछ बातें भी लाइफ उन्होंने कहा कि जिस तौर तरीक से मदन जी ये गाना को बनाया है उनका दिल को छू लिया था और ये कंपोजिंग पे कभी कभी वो कह देता था महफिल में कि वो अपने सारी पूंजी इस गाने पर कुर्बान करने के लिए तैयार है ये खास और खुमेई बहुत ही बड़ा बात है जो ये महान संगीतकार तारीफ के रूप में मदन मोहन जी को दिया अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो वो छुप रहे तो मेरे फ्रॉम द मूवी जहां आ रहा एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी आप श्रोताओं को तो मैं कितने बार कह चुका हूं प्रोग्राम में कि जो रिश्ता लता जी और मदन मोहन जी का था वो जबरदस्त भाई बहन का रिश्ता था और अपने बहन के लिए तो कितने मीठे मीठे धुने बनाए महान संगीतकार मिलके सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल

दुनिया करे सवाल अति सुंदर बयान ऐड फिल्म बहु बेगम निगरीन सीवनन सेस्तर महान संगीतकार मदन मोहन जी के साहस पर साहिल लुधियानवी जी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान। अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं यारो, और दिख जाए महान अभिनेत्री मीना कुमारी जी पर ये अति सुंदर बयान पिक्चराइज किया गया है। एक फिल्म अकेले मत जइयो नीतिंद्रियन सेस्तर। एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में मदन मोहन जी के साच मजरू सुल्तानपुरी के अल्फाजे।

ठीक है भी ब्यूटीफुल सॉन्ग महान संगीतकार मदन मोहन जी के मधुर साज पर आई फिल्म अकेली मत जइयो, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के आवाज में आप ये अति सुंदर बयान सुना। अल्फाज थे महान लेखक मजरू सुल्तानपुरी जी का। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, गीत और गजल ओटिस गोत संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम में आप सुनेंगे नगमा ओ शेर की सौगात। एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी फ्रॉम द मूवी गजल निकटिन फीलिंग सिस्टर साहिर लुधियानवी के अल्फाजे मदन मोहन जी की साज।

सुंदर अति सुंदर कृष्ण भजन यहाँ से मिलकर हमने श्रवण कर ली है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो प्रोग्राम में, भक्तिमाला प्रोग्राम यहाँ से जिसमें हम गोटा लगाते हैं एनर्जी उपलब्ध करने के लिए, ताकि हम अपना जीवन के साथ साथ ये दिन जो मिले हैं इसे हम बहुत प्यार के साथ बहुत खुशी के साथ इसे गुजारें। कम चीज़ों में भी बड़ी खुशी मिल सकती है, कम चीज़ों में बड़ी खुशी मिल सकती है, बस नज़रिया चाहिए। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की है, जिसने संसार को बदलने की कोशिश की है वो हार गया है, वो हार गया है जिसने संसार को बदलने की कोशिश किया गया है, पर जिसने खुद को बदल लिया है वो जीत गया है। और जो जीता वही

अवश्य। जय हनुमान, जय जय हनुमान। कहते कि बिना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है। राम राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे दोस्त, आप सभी को राम राम हो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो जरिए के सुप्रभात। सुप्रभात मेरे सभी प्यारे सुनने वालों के लिए, जिसने जीवन का वही रिश्ता सच्चा है मेरे दोस्त, कि जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। कितना सुंदर बात है ना। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है हम सभी को। हाँ, परमात्मा दोनों तरह से हम सभी को आजमाता है, कभी देकर और कभी लेकर। सुप्रभात हो, सुप्रभात हो आज के दिन।

रामा रतते रतते, मदर इंडिया के ये फिल्मी गाना के धुनें बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सवरिया, रामा रामा रतते रतते। बदल जाओ मेरे दोस्त, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना तो सीखो मेरे दोस्त।

अति सुंदर मेरे दोस्त, आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी ओम उपतलादन। एक उम्र के बाद मेरे दोस्तों, उस उम्र की बात उम्र भर याद आती है। एक उम्र के बाद उस उम्र की बात याद आती है, उम्र भर याद आती है, पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती है।

tadi. जैसे सूर्यदेव जैसे सूर्योदय के होने होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती है। जैसे सूर्य उदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाता है।

आपका दिन अच्छा हो या बुरा, वह पर ये पल जो है वो जरूर से अच्छा, जो हम शुरुआत करेंगे तो अच्छा ही होगा।

कितने दर्द भरी बयान, कितनी दर्द भरी पुकार हम अपने इष्ट से करते हैं, और अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वही एक तो है जो हमारा सुनता है। दिल से ये दुआ है, प्रार्थना है मेरे दोस्त, कि ईश्वर हम सबको वो खुशी दे जिसे आप और मैं रोज़ ईश्वर से, अपने प्रभु से, अपने इष्ट से

0: और जीवन के सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान। वर्तमान जो एक बार चला जाए ना दोस्त, तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। और वर्तमान क्या है? हाँ, वर्तमान ये है कि आज इस वक्त इस पल, ये पल जो है यही हम सबके वर्तमान है। ये गुजर गया तो गए।
1: जय बजरंग। जब धर्म बढ़ा, जब भय ने धर्म को जकड़ा, तब वानर नहीं

जय बजरंग बली, दिल से फैसला करो मेरे दोस्त कि तुम्हें क्या करना है। दिल और दिमाग से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, दिमाग तरीका निकाल ही लेगा। दिल और दिमाग के ये बात है कि हम दिल से सोचे और दिमाग उसका तरीका निकाल देता है। आपका दिन अच्छा हो और अच्छा हो कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में हो। अपने आप को ख्याल भी रखना।

ट्रेडिशनल हिंदी भोलेनाथ भजन अशोक मस्ती जी के आवाज में। अति सुंदर सुप्रभात मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते। उम्मीद मत छोड़ना, कल की सुबह आज से बेहतर हमारा होगा। अच्छा, दिन की शुरुआत अच्छे सोच से होती है। आपका दिन, हम सबका दिन मंगलमय होवे। इस वक्त के लिए स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार।

6 voor half 9 ho chala hai, 6 voor half 9 ho chala hai. और जैसे आपको पता है आज 1 जुली है, 1 जुली के तिकोती दाख है। हाँ,

0: तो यहाँ से अपना मान्यवर पंडित जी श्री राजकुमार महातम जी को हार्दिक से स्वागत कहती हूँ। पंडित जी आप आकाश में हैं।
1: धन्यवाद जी। हरि ओम महादेवम नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देवा सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुज श्यामल कोमलंगम सीता समारूपित वाम भागम पाडु महासायिक चारुचापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च ओमैव भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः स्वासुत्राय च मोक्षुक स्वरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। कल्याण करने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार और अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जागृत है मेरा प्रणाम या राम राम सीताराम पहुंचे। खास कर रेडियो फान को जो मालिक हैं मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूं जो समय प्रदान किया धर्म प्रचार करने के लिए। हम आप हर बुध की तरह आज भी कितने आनंद ले रहे थे जहाँ पर संता जी ने रेडियो फान को माध्यम से मैं आप कितने अच्छे ढंग सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आकाशवाणी के सुनने वाले हर बुध की तरह भी कुछ ना कुछ धर्म संदेश आपसे बीच में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कृष्ण भगवान के भक्त हैं जिनके नाम मीरा नाम से आप जानते हैं जिनका नाम मीराबाई। मीराबाई की सेवा में बिना नाम की एक दासी रहती थी। एक दिन वीना ने मीराबाई से पूछा तुम किसके साथ बात करते हो। मीराबाई ने कहा मैं तो गिरधर गोपाल के साथ बात करती हूँ। दासी ने कहा मीरा तुम प्रभु तुम ठीक ठीक बताना कि तुम प्रभु के साथ बोलते हो परंतु क्या प्रभु भी कभी तुम्हारे साथ बोलते हैं। मीरा ने कहा मेरा ऐसा कहाँ सौभाग्य है कि मैं गोपाल मेरे साथ बोले। मैं ऐसे लायक नहीं हूँ मेरे गोपाल कृष्ण मेरे साथ बोले। वाणी ने कहा उनके दासी ने कहा ना मीरा से वे बोलते नहीं तो पीछे तुम क्यों बोलती हो। तब कितने सुंदर बात बोलते मीरा ने। मीरा बोलते तब मीरा ने जवाब दिया बोलते नहीं परंतु मुझको आशा है एक एक ना दिन मुझसे बोलेगा। मेरा आशा लगाते हैं अपने दासी से बोलते एक ना एक दिन जरूर मैं इसे बोलेगा। इस आशा से मैं बोलती हूँ मुझको आशा है कि मेरे श्री कृष्ण को दया आएगी और वे दो बरस बाद बोलते यानी दो बरस बाद या 12 बरस बाद तो बोलेंगे ही मेरे पाप अधिक है और इसलिए 12 वर्ष बाद भी कदाचित ना बोले परंतु मुझके दृढ़ विश्वास है कि जीवन के अंतिम दिन तो वो बोलेंगे ही। कौन बोलते हैं मेरा अपने दासीस बोलते आकाशवाणी के सुनने वाले। इस पे ध्यान करना किसी मनुष्य से कभी आशा नहीं रखना और परमात्मा की आशा कभी छोड़ना नहीं। फिर से बात दोहरा रहा हूं इस पे ध्यान करना किसी मनुष्य से कभी आशा नहीं रखना और परमात्मा की आशा कभी छोड़ना नहीं, हम आपके लिए जाते हैं रामायण को। आप जानते मतंग ऋषि, मतंग ऋषि शबरी की, यानी मतंग ऋषि शबरी को परमात्मा आएगा ऐसे आशा देकर ब्रह्म लोक सिधार गए ना। शबरी आशा के ऊपर जीने लगे, परमात्मा की आशा रखनी ही महान सुख है। संसार के विश्व सुख को आशा रखना ही महान दुख है। आकाशवाणी के सुनने वाले, संसारी सुख भोगने की इच्छा ही महान दुख है। जिसके कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं वही संसार में सुखी है। ऐसे सारा जीवन व्यतीत करो कि कोई सुख भोगने की वासना मन में जागे नहीं। वासना बुरी है, हम आप जानते हैं। वासना के अनुसार विष सुख ना भोगे जाए, और भोगो भोगा जाए तो मन अधिक विष में सुख भोगने की इच्छा रखती है। और मन यानी मन चंचल, यानी चंचल बनता है। वासना जागने से तेज का नाश होता है। सुख भोगने के पश्चात हुआ कि मानव में रहने वाले बुद्धि शक्ति छिन्न हो जाती है। मन पर सदा भक्ति का विश्वास रखो। खास वाणी के सल किस प्रकार सबरी सेवा करते हैं। सबरी जी विचारती कि मैंने सुना है कि राम लक्ष्मण वन में जूता नहीं पहनते, वे तपस्वी होकर वन में फिरते हैं। वे बहुत ही कोमल हैं, वो बहुत कोमल हैं, उनके मेरे घर आना है। इसलिए घर को चारों दिशा में सबरी साफ सुथरा करते हैं। इस रास्ता से आएगा, कदाचित उस रास्ता से आएगा। इस मार्ग में सबरी माँ कहते, इस मार्ग में कीचड़ पड़ा है, ये ठीक नहीं है। समस्त दिन सबरी वहां पर अपने घर द्वार साफ सुथरा में, झोपड़ी जब आश्रम में रहते थे साफ सुथरा में रहते थे। जैसे हम आप दिवाली जो आते आकाश होने के सुनने वाले, और घर द्वार तो रोज साफ सुथरा हो है, लेकिन दीपावली जो आते हैं तो हम आप चारों घर द्वार साफ सुथरा करते। इस प्रकार सबरी माँ ने घर के चारों साफ सुथरा करते थे कि एक ना एक दिन हमारे प्रभु आएगा। सबरी यानी सबरी जी श्री राम के प्रतीक्षा करती, हमेशा उनके इंतजार करता रहा। कौन? सबरी माँ, कि राम जी के लिए सुंदर सुंदर फल लेकर आती। आज आएगा मेरे राम, ये आशा लेकर सायंकाल तक राम जी के प्रतीक्षा करते थे, उनके ध्यान करते थे। कौन? सबरी माँ। परंतु प्रभु नहीं पधारते, तब सबरी जी विचार करते कि अब तो अंधेरा हो गया है ना, आज उनको आने की फुर्सत नहीं मिले होगी, अब नहीं आएगा। सबरी माँ देखो नाना प्रकार के मन जो है ना, तो मन बहुत चंचल है। हम आप सुबह जगते हैं तो मन क्या क्या सोच के बैठते, आप विचार करो। मन जो क्षण मात्र में, देखो हम यहाँ है, मन क्षण मात्र में सुरनाम में है, मन क्षण मात्र में कहाँ भारत में है। तो आप नहीं आएगा, मैं पापी हूँ इसलिए मेरे घर नहीं आते, अब तक मैं लायक नहीं हूँ इसलिए प्रतीक्षा दर्शन नहीं देते, मैं लायक नहीं हूँ इसलिए। देखो नाना प्रकार के मन क्या बोलते हैं सबरी माँ के, इसलिए मेरे सामग्री भगवान नहीं स्वीकार करेगा। राम जी के लिए जो फल एकत्रित किया होते उनको सबरी बालकों को अर्पण कर देती। ऐसे भावना रखती थी कि मेरे राम बालक है। कोई गरीब इस पे ध्यान करना, आकाशवाणी के सुना ले, कोई गरीब आवे तो गरीब में राम जी के दर्शन करो, गरीब को भी फल देते हैं कि सबरीमा, हर एक नन्ना सा बच्चा वहां देखते हैं तो मैया सबरीमा फल अर्पण कर देते, उसमें देखते कि राम विराजमान है और गरीब को भी फल देती कौन सबरीमा, कोई साधु संत आते तो उनको भी फल देती, और गांव में भी मेरे राम जी विराजते हैं, ऐसे निश्चय रख कर करके गांव के भी फल खिलाते थे सबरीमा। सबरीमा निश्चित रूप से चारों दिशाओं में देखते थे कि किधर से हमारा प्रभु राम आएगा। दो दो मील तक रास्ते में साफ सुथरा करते थे और सबरी जी श्री राम श्री राम श्री राम का जप करते हैं। इस विचार करो कासाने के सुनने वालों, हमें वाप परमात्मा सात दिन या सेफ दाखन, तो उसमें हम और 24 घंटा है, तो 24 घंटा में से कितने घंटा कितने मिनट हम निकालते परमात्मा प्रार्थना में। शास्त्र में लिखा है कि मानो के 24 घंटा फांदी फिरन तो यूरन में से द्रियन तो यूरन 23 घंटा 55 मिनट द्रियन तो यूरन 5 तक मिनट जो है खाए पीने में काम धंधा में हम लगते हैं। कहा गया कि 5 मिनट मानो बहुत मेहनत से निकालते भगवान को ध्यान में, हमारे ऋषिगण फरमेने फुल्द करके रखा है। आप सोचे कि बात तो नहीं पंडित, हम तो रोज 1 घंटा आधा घंटा भगवान के प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे ऋषि ने फरमेने फुल्द करके रखा कि मानो के 24 घंटा में से 23 घंटा 55 मिनट काम धाम खाने पीने में हम व्यतीत करते हैं, बहुत मेहनत से 5 मिनट निकालते हैं, लेकिन सबरीमा सुबह से शाम तक श्री राम के जप करती है। बहुत वर्ष तक सबरीमा ने इस प्रकार दिव्य तपस्या की ना, तब करते करते अब सबरी बहुत वृद्ध हो गई। सबरी महायोगिनी थी, शरीर भी वृद्धावस्था आई, शरीर दुबला हो गए, परंतु आशा बनी हुई थी कि गुरुदेव ने कहा है ना, कौन गुरुदेव, सबरी माँ के गुरु क्या नाम मतंग ऋषि गुरुदेव ने कहा है कि मेरे घर राम जी पधारेंगे, श्री राम दर्शन के बिना मैं नहीं मरूंगा। उन्हें दृढ़ विश्वास था श्री राम दर्शन के लिए सबरी जीवित थी, सबरी रघुनाथ जी के प्रतीक्षा कर रहे थे, मन में निश्चय था कि श्री राम दर्शन करने के पश्चात मुझे प्राण छोड़ना है, श्री राम आएगा अवश्य आएगा। मैंने सुना है कि अब इस ओर पधारे हुए हैं, परंतु मैं उनके आमंत्रित देने किस प्रकार जाऊंगा, मैं तो नी जाति की भीलनी हूं। कौन देखो मन में सोचते सबरीमा, सबरीमा जी ने मन में विचारते कि मैं क्या लायक हूं, मैं जाति के भील हूं अधम हूं, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने कहा है उस प्रमाण से राम जी यहां पधारेगे तो अवश्य, परंतु मेरे आश्रम में नहीं आएंगे, बड़े बड़े ऋषि यहाँ विराजते हुए हैं, वे उन लोग उन्हें ले जाएगा, मेरे घर कहाँ से आएगा, परंतु राम जी जब किसी ऋषि के आश्रम में पधारेंगे तो तभी मैं उधर दूर से उनके दर्शन करूंगा, मैं अधम जाति के भिलनी हूँ, क्या प्रभु मेरे यहाँ पधारेंगे और साथ ही साथ सबरी को ऐसे लगने लगा कि श्री गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है इसलिए जरूर आएगा। आकाशवाणी के सुनने वाले, हमें अपने गुरु पर विश्वास करना, कोई गुरु मंत्र दे दे, लेकिन आज कहाँ उसे गुरु मिलेगा, इस पे ध्यान करना है, पानी पियो छान बीन कर करके ना। जो जल पियो छान बीन कर करके कोई को गुरु बनाओ तो उस पे विचार करना चाहिए कौन हमारे गुरु हो सकते हैं। कहने के बहुत है आकाश सोने का, लेकिन समय के अंतर्गत युवाणी द्वारा अपना परोचन विराम करने जा रहा हूँ। हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाघरे। ओम शांति शांति शांति हरि ओम।

मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ से हम सब मिलकर श्रवण की है सुंदर सा कथा श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारबिन से, जो अपना मूल्य समय निकालकर और उपस्थित हो जाता है हर बुधवार की तरह हम सब की सेवा करने के लिए। पंडित जी को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है और एक मंगलमय शुभमय दिन आपका भी होवे। साथ ही हमारे सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के

for twelve four half thing ho chala hai. Aaj 8 juli hai, satwa mahina mein humne kadam rakh di hai. छः महीना देखते देखते यूं ही गुजर गया है और आज से सातवां महीना का आरंभ हो गया है भी। तो जो हम पिछले 6 महीने में ना कर पाए हैं, तो यही आशा उम्मीद है कि आने वाले दिन जो है इसमें हम ज़रूर अपना शुभ शुभ जो है अच्छा अच्छा मनोकामना है फरलांगस जो है उसे हम आगे में चल के ज़रूर से पूरा करें। आप हिम्मत ना हारें और अपना कदम आगे बढ़ाएं। बैठ के सोचने से ही सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, सोच कर और उसे प्रयोग करें। Beweging in brengen en dan kunt u dan het resultaat op den duur ook van zien. जैसे कहते हैं कि बहता पानी में उसमें बहुत सारे सूरस्टॉफ रहता है, बहता पानी में सूरस्टॉफ रहता है और जो पानी बंद रहता है जो उसमें बहाव नहीं है वो समय के अनुसार उसमें गंदगी हो जाता है, स्मेल आ जाता है भी। वैसे भी जब हम यात्रा पे जाते हैं, अगर आप अकेले हो या पूरे परिवार के साथ यात्रा पे जाते हो और वापस आते हो 3 हफ्ता के बाद या 2 हफ्ता के बाद, घर पर कोई नहीं है तो ये भी कहा जाता है कि अगर 2 हफ्ता के बाद आप आओ, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता के बाद अगर आप घर पर आओ या 3-4 दिन के बाद अगर घर पे आओ, घर पर कोई नहीं है तो अपना घर का नल जो है, क्रान जो है, उसे थोड़ा देर के लिए खोल दे ताकि जो रुका हुआ पानी है वो बह जाए। क्योंकि कहते हैं कि रुका हुआ पानी में उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, अगर वो बह जाए तो फिर आप इस्तेमाल करना तब एंती खून फर्सी कर एंड वे ती ओग दाती खसोन कंसेंट।

बेशक आपने पुकारा और हम चले आए। मोहम्मद रफी जी की आवाज में साथ दे रहे थे सुमन कल्याणपुर। मैं देख रही थी कौन सी फिल्म से है, फिल्म का नाम राजकुमार, राजकुमार फिल्म से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है आप ही के लिए। याद न जाए बीते दिनों की, मोहम्मद रफी जी के दर्द भरी आवाज में हम सुनेंगे।

याद न जाए बीते दिनों की, मोहम्मद रफी जी की आवाज में म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जय किशन और गाने के लेखक है शैलेंद्र जी। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर, जो नेहन 363 तक में पिक्चराइज किया गया है। नियत कितने भी अच्छी हो, नियत कितने भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है। और दिखावा कितना भी अच्छा हो, दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नियत से जानता है। और ये एक खास बात है कि विश्वास करने से पहले लोगों को अच्छी तरह परख तो ले। क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां नकली नींबू पानी यानी कि लिम्का स्प्राइट से आपका स्वागत होता है। और असली नींबू पानी हाथ छूने के लिए दिया जाता है, असली नींबू पानी हाथ धोने के लिए दिया जाता है। तो विश्वास करने से पहले लोगों को अच्छी तरह परख लीजिए।

मेरे प्यारे सुनने वालों, आप इस गीत के जो आखिरी कमाल सुने ना, इसके बनाने सजाने में बहुत मेहनत लगता है, सुनने में इतना आसान इतना अच्छा लगता है। फिल्म का नाम कश्मीर की गली, कश्मीर की गली रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ में। लायरिक्स गीत का लेखक है बिहारी जी और म्यूजिक जो इसमें दिया है ओपे नायर। स्टारिंग फिल्म के स्टार कास्ट जो है शमी कपूर और शर्मिला टैगोर। जिंदगी, जिंदगी वो हिसाब है मेरे दोस्तों कि जिंदगी वो हिसाब है जिससे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, अपने आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें।

जगजीत सिंह जी की आवाज़ में यहाँ से श्रवण की है कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। मैं भी यही कहती हूँ कि जिंदगी में जरूर से मुस्कुराते ही रहना, कि जो गम भी आए तो वो आपके मुस्कुराहट देखकर और जल्दी से रवाना हो जाए।

0: फिल्म लापरवाह से निकाल दिया गया है कोई भी मेरे दिल में, तो आया था मिथुन चक्रवर्ती जी के आवास में हम देखे तो, ने चंद्रानी मुखर्जी के आवास में साथ दे रहे थे किशोर दा, बप्पी लहरी जी के साज और संगीत में।
1: सिर्फ नाच गाने की बात होती तो मैं और नीलम बहुत काफी हैं, लेकिन जैसा कि आप फरमा रहे हैं कव्वाली, कव्वाली के लिए सामने मुकाबले पर को होना जरूरी है।
2: वो भी है।
0: इस बार हम सुनेंगे किशोर दा जी के आवाज में साथ दे रहे इस बार मन्ना दे जी।
3: जैसे कुत्तों के हाथों मरना मेरी शान के खिलाफ है हीरा लाल।
1: और शट अप सर, मुझे एक मौका और दीजिए।
2: तुम लोग अगर जीना इनको कव्वाली के मुकाबले में हरा दो तो शायद मैं तुम्हारी गलती माफ। तुम तैयार हो जी नाइन?
3: मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, चाहे कव्वाली का चाहे जिंदगी और मौत का।
0: जी नाइन मतलब मिथुन चक्रवर्ती।

किशोरदा मन्ना दे जी की आवाज़ में फिल्म का नाम सुरक्षा। जी हाँ, फिल्म का नाम सुरक्षा। 93 तक में ये पिक्चराइज किया गया है। इसमें कलाकार है रंजीता और जी नाइन, हाँ जी नाइन, मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती।

0: हंसी है। इस बार हमने सुने हैं मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में कितनी खूबसूरत से वो गाकर और सुना दी है दिल छू जाने वाले आवाज़। फिल्म का नाम ख्वाब, नीलकंठ तीन तख्त तख में ये पिक्चराइज किया गया फिल्म है और इसमें भी एक बार फिर ये फिल्म में कला दिखाई अपने मिथुन चक्रवर्ती जी साथ दे रहे हैं रंजिता कौर। फाउन रेडियो पे हम सब चुन हैं आज खास तौर पे कुछ मिथुन चक्रवर्ती जी के गीत हम यहाँ आपके लिए पेश कर रही हूँ।
1: अरे मैम साहब, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए मैं हर लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ।
2: न्यू ईयर ईव को तुम्हारी सगाई मेरे साथ होने वाली थी और कमला के साथ भी।
1: अरे बाबा, मैंने कहा ना मैं कुंवारा हूँ, वैसे मैंने एक चांस लिया था। अब तो फैसला आपके हाथ में है। देखिए, आप दोनों सहेलियां, आप में से कोई भी मेरे साथ सगाई करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। वैसे पसंद आप कराटे और भी कुछ सीखा है?
2: बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम जैसों के लिए इतना काफी है।
1: और चाहिए?
2: नहीं।
1: फिर हाथ जोड़ करता हूँ, मैं हार गई।
2: मैं हार गई?
1: लाओ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ।
2: शट अप, तुम मेरी जान लेना चाहते थे, उस क्लब वाली लड़की का खून तुमने किया है।
1: मैं अगर किसी का खून करना चाहूँ तो वो बचनी, ये तो सिर्फ एक नमूना था, वो भी इसलिए कि लड़की होकर मर्दों पर हाथ उठाना बहुत बुरी बात है डाली।
2: मैं तुम्हारी डार्लिंग वार्लिंग नहीं हूँ।
1: इतना बदल दो, ब्याह का मतलब डार्लिंग होता है।
2: तुम जैसा आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा।
1: वो इसलिए नहीं देखा है कि मुझ जैसा आदमी लाखों हजारों में एक ही, दो चार मुलाकातें बढ़ जाएगी, फिर तुम गाना गाओगी,

तो करना चाहिए और ठीक किया कि प्यार किया तो ठीक किया। आप भी पिथौरा से प्यार कर लो, मिथुन चक्रवर्ती जी के फिल्म से निकाल दिया गया है। यहाँ हम सुनेंगे ऐ मेरी आवाज के दोस्तों।

Wie niet op zijn eigen plek staat, zoekt in liefde vaak een oplossing voor innerlijke rust. Wie wel op zijn plek staat, zoekt geen redding, maar verbinding. Onvolwassen gedrag zegt, zie mij, kies mij, bevestig mij. Volwassen gedrag zegt, hier ben ik, dit is mijn plek, dit is mijn leven. Sta jij op je plek of ben je nog steeds aan het vechten voor een plek? Mere piyare sone walo, fahon radio pe aap tune hai. Ye pal, ye samay aapko bahut se badhai hai. आपके लिए एक सुंदर सा गीत, हर एक गीत है सुंदर है, जैसे आप सुंदर है वैसा सभी गीत है जो गाया गया है हमारे सांगर्स के। सांगर्स के जरिए से सभी एक एक लाजवाब है, दिल छू जाने वाला है। और हमारा गायक गायिका तो कितना नहीं रह गए हैं, पर उनका गीत हम आज तक सुनते हैं, उनमें से एक ये मैं शामिल किया हूँ। कि कोई आएगा लाएगा दिल का चैन।

धीरे धीरे बोल कोई सुना ले मुकेश जी लता जी की आवाज़ में साथ मिलकर सुना देखिए। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले फिल्म का नाम गोरा और काला पिक्चराइज किया गया है। नेखंतिन तुवेयन सी फंतख में स्टार कास्ट इसमें है राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी और रेखा जी। लेकर चलते हैं सुनने के लिए आजा तेरी।

राजा तेरी याद आई, आप कहाँ हो? लता जी के आवाज में साथ दे रही थी मोहम्मद रफी जी, फिल्म का नाम चरस। धर्मेंद्र जी का एक सुंदर सा फिल्म है, कलाकार इसमें है धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी जी, अरुणा ईरानी जी। पतझर सावन बसंत बहार,

Sunt bahar, felem ka naam sindur, felem sindur se ye sundar sa geet ki patjhar saawan basant bahar nikala gaya hai. Nikantin sevnan takht ki ye sundar sa geet, ye film यो पिक्चराइज किया गया है लता जी के आवाज में और मोहम्मद अजीज के साथ. इसमें जो ये दोनों ये सुंदर सा गीत हमको सुना दी है. मौसम भी बदलते हैं वक्त के साथ, इंसान भी कुछ कम नहीं. दूर तक छाए थे बादल और नहीं और कहीं छाया ना था. इस तरह बारिश का मौसम कभी आया ना था. मुझे ऐसा ही जिंदगी का हर एक पल चाहिए. मुझे ऐसा ही जिंदगी का हर एक पल चाहिए, प्यार से भरी और संग तुम चाहिए. हमारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना है और तुम्हारे शहर का मौसम भी बड़ा सुहाना है. लगे एक शाम, एक मौसम, एक पल चुरा लूं अगर बुरा ना लगे. फिल्म एतबार से आपके लिए निकाला जाता है. किसी का इंतजार, किसी न...

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

फिल्म का नाम एतबार निगंती फैफन तख्ता की पिक्चराइज किया फिल्म है। इसमें राज बब्बर, डिंपल कपाडिया और दीपक परेशर अपना साज और संगीत में ये कला दिखाई है। खामोश मोहब्बत भी कभी कुछ कह जाते हैं कि खामोश मोहब्बत, खामोश मौसम भी कुछ कह जाता है और मोहब्बत भी कुछ कह जाता है। सन्नाटा बनकर, सन्नाटा बनकर दिल के पास रह जाता है। आज का मौसम बड़ा सुहाना है, आज का मौसम बड़ा सुहाना है, दिल में तेरा प्यार का तराना है। लॉन्ग ड्राइव में, लॉन्ग ड्राइव पे मेरे साथ चलोगे क्या, लॉन्ग ड्राइव पे मेरे साथ चलोगे क्या, या फिर आज भी कोई बहाना है।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन की सुनने वालों को हमारा एक बार फिर से राम राम, नमस्कार, प्यार भरे लाभ, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। दोस्तों, आप लोग को तो पता चल चुका होगा कि यहाँ से हम अपना सुरीनामी देश का और विदेश का समाचार भी आप लोग को सुना देंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे मौसी लोन, मौसा लोन, नानी लोन और नाना लोन, आजी आजा और परिवार लोग, आप लोग के पता है कई साल से हम समाचार को और सुनाते हैं और यहाँ पर बताए गए हैं कि आप लोग को शायद याद होगा कि 2023 में, यानी 2023 में, हाँ ना 23 में, 2023 में पीकिंग सारोन में तो जाने आदमी ब्लॉक ले ले फ्राखवाखन पितृक पे जांत रहा और वहाँ पे बहुत जबर सबन अक्सी हो रही कलेरा डाम बंद कर दे रहा और कितना ट्रैकर में आगे लगा दे रहा, लकड़ी जर गया रहा, बहुत आफत मचल रहा। ये पिकिंग सरोन के बात है मई 2023 में हमारे जनता, और जो शायद कोई न्यूज ना जानत हुई होश ना हुई तो तरी से हम बताई दे कि हुआ पे पिकिंग सरोन में भैया तगवल भी भइल है, स्कौतु पहुँचल है, जिसकौतु पहुँचल तो ओसी के आदमी दागे सिपाही के और सिपाही दागे उस सब के भैया, और बताए गए है कि वहाँ पर स्कौतु दागिस दुई आदमी मर गए रहा, तुई लेकन वहाँ पे सबन ले गए रहा लेली तौरप के पुलिसी ब्यूरो के मारतीवारियों में धरल रहा। और वहाँ पर दोस्तों दो आदमी मरल रहा, पिकिंग सरोन एगो दुर्पू हैगा दौरब खबीत में, जहाँ पे ग्रासालको हैगा मारी पास तुंग है बहुत ऑन रिस्ट खड़ा वहाँ पे दोस्तों है ब्लेक द त्वी वेरक नीम ग्रासाल को खैसल स्वारन दूर ओम स्तांदल लिंगन खैसल कल रहा दूसर कोई इदु को कम करतन के ग्रासालको के दोस्तों। और बताया जैसे नाम से पुलिस ऑफ एन मोमेंट फर्स्ट क्राइम फेस्टक तेघन, और बोले ग्रासालको के दुई को अनमी के समान का बोले हैगा खैसल कर ले रहा हमारे जनता, और बतावे हैगा उही में दगवल भइल है ओसी से बंदूक, ऐसी से सिपाही के बंदूक, और दुई आदमी ओमा मर गए रहा दोस्तों। और जब मर गए रहा तो कर बारे में जड़ जबरदस्त साग गए फॉर द रेक्टर कि सिपाही लोग के चाहे बन होवे के, तो एमा इन द दाद भैया स्कूतु लोग के साग गए है दोरो। और जो नरमियन दुई को मरल रही एगो नाम रहा मार्टिनस वाल्फियाखर और एक वक नाम बा इफा नेल्डो देगस्टील, तो दोनों सिपाही दाग के मार ढाले रहा हुआ दोस्तों। तो ओकर ना बस्तांतन जो रहा फॉर द रेस्ट लेके कि सिपाही लोग के चाहे बन होवे के, तो एक बार में अब जाए के सखवा रोंत भइल है फॉर द रेक्टर सकवा गईल हैगा पुलिसी उपतरी ने पिकिंग सरोन सुरीनाम में, और चारों स्कौतुन जो रहा बस फ्राई खसप्रोकन हुई गए भैया चारों स्कौतु के, और रेक्टर फ्राई खसप्रोक कर दी से। और ये रेक्टर हैगा सिंथिया क्लेन बोले हैगा बवीसन फॉर क्लारिंग से मैं से अख्तर द बत्रोकन अखेंतन दार फो निस्त्रावर आठ मिला के रहा।
और बोले आठों के फ्रई खसप्रो को ही गए। बोले ओमदत इस सब दागी से उस सब के कि नौत वेर में रहा। बोले दगवल उधर से होत रहा इधर से भी होत रहा। यही के मारे में बोले द सेफन अखेंदर वर्दन फरदाख फन खबरई फन डिसप्रोपोर्शनल खवेल्ट। बोले उस सब दागे रहा को उतन। बोले नानू उड़खरा दागे ओकर खात रेखतर इस सब के फ्रई खसप्रो का करी से। बोले इस सब नौत वेर में अपन के दागी से। बोले द फरदाख्तन वारन दोच लाख दुनु मर गए रहा। स्वार में सांदंग में द दोत खफोलक एन दोत दो शुल ते लास्त खलेक एक रूपल कसकूतों को पर कर ले रहा। फरवार लेक बोले 12 महीना के जहल का एस्ट मेट अन प्रूफ स्टेट फन 3 यार तेन आंसीन मार्टिनस वॉल्फयागन सेन 4 agenten फ्रई गस्प्रोकन फन अले फेटन इन द साक रोन इवाल्डो देगस्टिल ओरदेल द रेखते दात गेन स्प्राका वास फन दोचलाग। वेल अख्ते द रेखते बवीसन दात 3 agenten स्कुल हानन अन दोत फन देगस्टिल। बोले इंदरदाद ती तीन सिपाहियों के दागे से। बोले toch bewezen verklaring niet strafbaar volgens de vonnis was sprake van een noodweersituatie. De agenten hebben wel geschoten maar deden dat volgens de rechter binnen hun bevoegdheid als politieambtenaren gelet op het geweld en grimmige omstandigheden op dat moment mensen toch ja wat aanwegen. Die rechter, bolle hega, rechter kwam daarop tot ontslag van alle rechtsvervolging op de 10 sipahien bij wie dood door schuld bewezen werd gemaakt. Dat betekent dat het feit juridisch wel bewezen is, maar de verdachten daarvoor niet strafbaar zijn mensen. Toen door het mee merken, ja, Rivaldo, Aurigo, Aure, Vibraam, Bataite. लेकिन सबके सिपाही छोड़ दी से हमारे जनता जने सिपाही ना रेख्तर सबके छोड़ दी से। बोले सब दागी से अपने बचाओ खातीन नोटवेर के। बोले ओशो दगल होतरा ऐशो दगल होतरा। बोले जैसे सिपाही ना दागत अपने मर जातो तो बोले उस सबका नोट साख रहा दागे के। और बोले मा दुई आदमी बोले मर गए है हमारी जनता। एक औरत भैया गई ले वैदम बॉस ब्रुक पे ना हबड़ा होत रहा नानी। गैला कूदे भैया गैला कूदे ऊपर से वैदम ओतो और ओतो ना बुताई से ओतो लेके गैला और ऑन बहेर ओतो हुआ छोड़ दे से और हुआ पे बताई गई है रात के वैदम बॉस ब्रुक के पास खुद गए है औरत मशीन ओतो के समय ना रहा बुतावे के। और 5 बजे सवेरे सिपाही गई है पुलिस ब्यूरो हरमान गुदिंग क्रीक 5 बजे मेल्डिंग पाई से कि वो ओतो वैदम बॉस ब्रुक पे है जो उनके मोटर ड्राई हुए है। और बोले बेटा आंस कम स्ट्रॉफन द वेस्ट इन आर auto pijs me bestuurder na pijs terwijl de motor nog draaide. De camerabeelden is volgens politie gekeken dat de bestuurder van de brug is gesprongen. Aur hua camera lagawale upar dekhan ke auratia pani me kud gaye hai. Lekin yahan pe nahi bataye gaye hai ki uska lash mila hai ki na. Van burki pe se kudiyo bhaiya ta kam me aasa hai ki tohara leik milega. तुम पाई तो जानो भैया एनपीएस में चल गए है गा। पहले रहा पुलिसी बोन सिपाही में रहा अब पार्लियामेंटारियर हो गए है गा। यानी कि पातो आतों पाई पार्लियामेंटारी हुई गए एनपीएस के। और बोले इन सूरीनाम जी ओवर बस वर्गीकरण बस के कन। बोले सब्सिडी फॉर द ओवरहेड ऑनफांगन मार हिन बसन हैवन हियर अंडर फॉलन ओ पर्सन इन बिपाल फंक्शन बक्लेन। बोले एक एक गो आदमी लोग के बोले सब्सिडी मिले बोले के बस है ये ना आएगा। बोले कैसे हो सके हैं तो सन्ना में तो आदमी काम भी ना करे पैसा पावे भैया और मिस्त्रासी हुआ पे ऐसे बोल दी एक को बुन देख करे भाई तेज बखरोती महंदलिंग में। एक बारे में एक स्पुदक महंदलिंग आयल है बोलेगा फान द काल प्लुक वेत ओम दे इसे पर्सोनन अंत पकन की इसे पर मेन के जहीं पकड़ाई के। बोले दे मांग नो आबी बस बोले सेंस यार एन दाग होनन वे दर फर्क्यूनिंग वर्दन फर्कोख। बोले बस है ये ना फर्क्यूनिंग बिका है। बोले अन मान नो हावी बस एन एक कांसो 20 फांस आनवेशन ये हैं मेंसे दी अन बरूप एरफान हैवन खमाग एन दारो मुद द काल प्लुक वेत कोमन ओम दत वे मेंसन हैवन दी in de functie zijn gegaan, busvergunning hebben verkocht en
miljonair zijn geworden. Hoe ze vergunning aanvragen. Of bus of vergunning. Sub maanden we. Of beter subsidie bouwen we. Bolle één persoon heeft 10 busvergunningen. En elke man ontvangt hij 10 maal de subsidie van mama's ranang. En dan. En de potisma erbari. Zei de NPS'er. Dat wil ik dat vergunningen bussen jenaar. Of beter vergunning, manke vergunning, wat bedden we als subsidie op een dorp houden. Volgens de politicus moet de regering beter gaan kijken naar de subsidiebeleid. En alleen degenen subsidiëren die dit nodig hebben. Te bolle gaan. Atompai, or bolle DNA, Leiden, A.W. Jones, NDPK, or Ivanello, Plein en PSK dienden in december al vorige week een wetvoorstel van ondernemen. Bolle hega bekeker bare me OWVV, zogenaamde kaalplukwet, in het mogelijk moet maken en veroordelen volledig te ontnemen van de wederrechtelijke verkregen van voordelen. De Navia kaalpluk TL, kaalplukwet, dus amandarie, bekeken. Is op kijken je je kaalpluk kreeg, want is op kijken kreeg hij ja kaalpluk, want hoe heb je koei pijs op aange toch een kuch hier na pijn kon je, Suriname met de lonjano bij je kaalpluk wet naam hebben ze, maar uiteindelijk wordt het niet meer gebruikt. ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता आप देखो एनडीपी के बारे में ही या एनपीएस और एनडीपी भैया अपने में बोले हैं एनडीपी बोले हैं बोले हैं बोले इन अन खसीन स्कूल टास प्रोजेक्ट एगो सरना में खोली से रखेरिंग सिमोंस और रुसलान के बोले सामन खोली से बके क्वालिसी खनोट एनपीएस आउटफूरन althans dat is gebleken uit de discussie die aan me die dono partijen hebben gevoerd tijdens de begrotingsbehandeling. Op dit moment is het schooltaalproject ondergebracht bij het ministerie van een jeugdontwikkeling en sport. Op het eigen betaal waarvan de minister uit de gelederen van de NDP voorkomt. Op bollega to jeugdke delen waar de bekuw NDP kehen, waarvan NPS bij coalitie me ba. Op bolle begrotingsbehandeling met NDP AB Jones bolle he, ki schools projectwa jone onder minister Joske naam pe chahen jaike. Op NPS bolle Joske minister NDP kehen, ta janta sojik NDP pa maanti se. Op bolle u NDP na maanti se ga. Bolle NPS Diana Leed, Plein bolehega voorstel kadisega ki projectwen, chahiga, 10 minister kes gezamenlijk chahin uitvoer kareke, bolehega Minofke, Oro hega ukar yane sociale zaken ke. Also saaf ook he. Bolle NPS beheert alle drie ministers hebben raakvlakken met de schooltassenproject. Jos gaat over jeugdigen, Minof over educatie en zo saaf onder sociale zwakkeren. Alle drie hebben de schooltassen nodig, laten we onder één budget het project uitvoeren. Er komt dan een gezamenlijke aanvraagformulier waardoor er geen overlappingen plaatsvinden. Wat nu gebeurd is, is niet efficiënt en effectief mensen. Dit is ठीक बात बोले है इथरो अपन जे भी पैसा लगाइए भैया यहां बताए गए है ई प्रोजेक्ट तो जो हैगा ई लांटी के भैया देना लेट रुसाला कोस्टिनो से दैट है स्कूल प्रोजेक्ट बखोनन इस टाइम इन बौतर के रेगिंग में 2010 में अब बोले हैगा स्पोर्ट एंड यूथ साखन बोल के altijd करी से द एनडीपी टू ook minister van onderwijs maar hij bewust gekozen om het toen sportzaken te doen. Op de NPS-DNA Poetin Atompai niet terugvinden in deze stelling. 2010 is dat zo gebeurd, maar als we het evalueren moeten we het toch achten anders doen. Bolle NDP fractieleden te absap koi te mangen op een naam bataan bhaiya ki hum batali bati jo ne hum stem hua pai to bhaiya ye sab baat koi na dekhe janta ke chahi mile ke chahi dikhawe ki ke baate hai jo ne namua u banave aise batiya hai हमारे प्यारे प्यारे जनता अब देखो भैया
कहा बोले अमेरिका को और हम जाए तो लोग जाने हैं और यू बाइडन एक्स और प्रेसिडेंट रहा और ट्रम्प के देखिए का का बोले भैया प्रेसिडेंट ट्रम्प के बोले है गा अने डेमोक्रेटिक पार्टी खाला इन मैरीलैंड स्कैरप के अनफाल करी से 83 यार के हो गए जो बाइडन पॉलिटिकल रिफाल ने अंदर मीर अ नार्सिसिस्ट है गा करप्ट एंड लूसर बोली से बाइडन के ओके भैया है स्प्राग फ्राइडे आवंट इन द हनोवर टेनिस में इनकम्स वार्मी हेल्थ वेट इनकस्कामल फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी इन आनलोप नार द टिसनटेसे वर्किसिंग फॉर नोवेंबर और बतावे इन से ongeveer 10 मिनट के toespraak met Biden. Kijk, puntenlijstje die Trump volgens zijn fout. Hij richtte zijn kritiek onder meer op de Amerikaanse opstelling tegenover de NAVO en Rusland. De bari-bari baan Joe Biden 10 minuut mee. En Trump ke boli se, want hoe aap bhi verkiezing hua chahi hoeg na. तो ये सब बात हो रहा है देखो भैया अमेरिका फुर्त अनफालन अमेरिका फिर अनफाल करी से ईरान के ऊपर आज रिएक्शन अनफाल ओपन स्केप एगो बोर्ड के ऊपर अनफाल करी से तो बोले अमेरिका बोले लुक अनफाल करी से ईरान के ऊपर एगो बोर्ड पे अमेरिका के मिलिटेर करी से मेरे ओस्त में बोले द अनफाल इस फॉल्कन सेंट्रम रिएक्शन ऑफ द अनफाल ऑफ अ फ्रैगशिप किस्ट्रेन काल एगो फ्रैगशिप पे बोले वार द अमेरिकानस प्रेसिडेंट ईरान फॉर फ्रंटवर्ड हाउस ईरान एगो बोर्ड पे दागे रहा तो आज अमेरिका उल्टा दागे से ई सब का करे भैया दो रोज बन अन फ्राइडे स्लाइस करे अति रोज में लड़ाई शुरू कर दे है तो अमेरिका के बड़का-बड़का खफेक्स फ्लिक टाइकन जोन है Geil he, Iran ke opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ja, ik heb daar gezegd, hoe ze op opslagplaats en drone ke. Obele de radarposten langs de Iranse kust waren volgens Senskum het doelwit. Iranse staatsmedia berichten, bole de omgeving van een pier bij de kustplaats strik was getroffen door een projectiel. ते इस अकॉर्ड भले फ्रीडम में तब बोल लड़े भैया ये माँ फीस प्रेसिडेंट जो है प्रीमियर जो है का फैंसी बोले है का अनफाल भैल है बोले खवेल मेर खवेल बोर्ड बस्तीदन बोले वो ये खवेल करके बोर्ड डागेगा तो हम लोग का देश डाग बोले आज है ईरान है ऑन एज इस में हु द वापस तेल सार वोट का हां था मुझे से टेलीफोनिस कांटेक्ट अपनीमन स्क्राइव थी ऑफ बोले जो इंच ना तो बोले हम लोग का बेल कर बोले ना जा बोर्ड टू डागे तो एक बारे में तीन को ड्रोन्स कोंदन वर्द नेर कहा सेफ ड्रम बोले अमेरिकन से प्रेसिडेंट भी इन सोशल मीडिया पोस्ट niet gemeld waarna de Iraanse aanvallen plaatsvonden. Ik op Britse maritiem organisatie hega, obolis hega, bole Oman werd geraakt door een projectiel. Ja. De waarschuwker is de Iraanse autoriteiten waarschuwker is hebben naar de aanval gewaarschuwd dat schepen die buiten de door Iran vastgestelde Russische varen geen garantie hebben op een veilige doorgaan. Ook zegt Iran dat de gevolgen van het gevaren, dat het varen via geautoriseerde routes de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaren, de exploitant en de kapitein van het schip. Obele de Iraanse staatstelevisie berichtte dat drie tankers na een waarschuwing van de garde zijn omgekeerd omdat ze hadden geprobeerd om de ongeautoriseerde wijze door de straat Hormuz te varen. ते बोर्ड जो नदमी चलावे भैया उस सबके ऋषिको बड़ा भारी भाई चला जाए फेनिसवेला को भैया जहां मदुरा के पकड़ के अमेरिका बन करी से आप लोग तो जानो भैया हुआ पे और तू जाने मदुरा जो रहा बहुतस के बहुत बड़का दोस्त रहा जो समय पे बहुतस लुकान रहा कोई सोयत रहा चल गए फेनिसवेला में एवं बेड़ा वार दी में से रिश्ता स्क्रीन फार्म खनान और दोनों पटत रहा और आज फेनिसवेला में इतना बड़का दुख है और सरनाम कुछ ना करे भैया तो बड़ी दुख की बात है कि ओकर देश में इतना ढेर आदमी मरल हैगा दौड़न दुबला
beving bij Lega. 1430 bij ja. Bolle dubbele arve is afgelopen tot minste 1430 goal. In de zwaarste getroffen kuststraat. Johne La Guarame. Jahan pe palwar loon laas hoge bij ja. Admi loon se puin ke nietje ma. Admi khoja hai naar overlevende. Terwijl veel bewoners klagen over een ontoereikende hulpverlening. Hoe ze heb je na hè? Hulpverlener. De Bolivianse autoriteiten maakten zaterdag bekend dat 1430 admi merge hè. Doei go zware aardbeving bij de boedwaar ke. Bolle hega 7,2 en 7,5. Bolle hega bevinding hadden van de magnitudes. Bolle veroorzaakte grote schade onder. Aur ekar bare mein jo sto okay janta ke dukh hai wahan pe family hai wo folks the most recent aur bole hai ga 68,900 en meer laat zo je napawe hai aur bole het aantal en gewonden is afgelopen tot meer dan 3200. Duizenden mensen hebben hun woning verlaten mensen aur bole na de schok. De eerste cruciale dagen na de ramp zijn voorbij, maar redderswerkers blijven zoeken naar tekening van leven. Oh ja, wat ga je hier doen? Dat de ene ekerbare me bolle bahut moeilijk hega door de beschadigde wegen me chaleke jaike bolle internationale luchthaven jo hega aur we Caracas me lip schade ook mensen waardoor aanvoer van hulp en personeel vertraging heeft gelopen. Sukerwaar ke 4,9 krachtdragen geregistreerd voor de noordkust van Venezuela. De nashock werd gevoeld onder meer Caracas. Op de Europese Unie 5 miljoen euro deze noodhulp vrijgemaakt via de Europese mechanisme voor civiele bescherming, reddingsteam, brandweerlieden en medische personeel gemobiliseerd. Ook satellietbeelden worden gebruikt om de schade in kaart te brengen tot 5 miljoen. Paisa Europa die zeggen brandweerke of reddingske help kreke. Op de dubbele aardbeving geldt als een van de zwaarste rampen door Venezuela met bijl heeft. Amerika registreert heeft 150 miljoen aan noodhulp van Venezuela gemobiliseerd. Amerika 150 miljoen dollar noodhulp diga kabelen Venezuela ke. Daarvan gaat 50 miljoen naar de organisatie in direct ingetroffen gebied actief, waaronder het wereldvoedprogramma van de Amerikaanse en internationale medicaal korps. Bolle 100 miljoen bestemd voor het gezamenlijke noodfonds van de Verenigde Naties. President Rodriguez had vrijdag telefonisch overleg met Donald Trump en de Amerikaanse minister Binnenlandse Zaken. Wat jij zegt, ik kijk je gewoon je hulp. Lekker in Suriname, ke baren me kahuna padila bhaiya. Ki Suriname ke koi gail hai. Aur Venezuela me koi madad kare hai. Koi madad kare hai. Want Suriname me Venezuela kalmi bhi bahut rahe lagal hai. Jo samay pe en Madura hoa pe khaik pani na raha dan mi bhag ke Venezuela me raha aur joon samay pe Amerika Venezuela ka Madura ka lege raha us samay pe hum log ke president Suriname ke na eens raha aur aaj jo deswa me dukh paral hai da hor ek niemand roofer sekh ki koi ek saka chaur hoa pe jai ke de de koi help jai hoa pe khoje ke dosto. En dat vind ik heel jammer. Zoveel mensen zijn daar. Namelijk dood mensen. Hamjaila, ex-voorzitter van de DNA en tegenwoordige minister van Binnenlandse Zaken van Suriname. Omarinus van BK, bole bhaiya. Begrotingsbehandeling met anonieme bole admi bataai se ke kehiya chori kare. Ke nat kare he bhai batia tari batao. Volgens bewindsman bole he ego melk lijn jahi khole ke. Waar bredere opschoning van overheidsapparaat na bij de controles grote verschillen zijn geconstateerd. Tijdens de personeelbestanden het aantal daadwerkelijke

और दोस्तों हम अपना प्रोग्राम को लेकर आगे को बढ़ाते हैं। तो जनता हम चलते हैं और आगे को तो हम जाते हैं। आप लोग जानो अब ऑपर भैया सांपी एगो है, अब ऑपर है तो भैया अब पार्लियामेंटारियर है एथकार सांपी है। बोले है जोन फेनोमेन रहा, मतलब कि फेहा पे के और आए फेनोमेन रहा। बोले अब वही ओलीफांत और आए ओलीफांतन सिंड्रोम जोन है। बोले अब पार्सर सी ड्रोन हुई है। बोले जब फेहा पे आएला तो बोले जितरा जितरा जगह रहा सब आदमी के निकार के अपन जगह धरी से। अब बोले ये रख रहे वाल तो बोले एक को न तुर ड्राई करी से। बोले वारफान ओके चांदा सब ड्राई करे के तुर बोले एक को बुन न ड्राई करी से। जैसे कि बोले है वानिका में परमारिबो में बोले एरू रहा पहले मिनिस्टर ऑन ट्विकलिंग के। बोले जो फेल उठावत रहा अब बोले ओके हटाई के बोले संतोखी बोले धर दे रहा ओवी में। अब बोले अब आल है बहेर रहा एरो के। अब बोले अफ खपाक ओके लगे से लेके ओवी के दे दे रहा। अब बोले ई का बोले है ई नौका रे खरी वन जो रेसलान सी मोन के बोले कुछ ना दराई किसे या मर खुनुंग मेरे खे दादिर बसलाई ते रखे प्रियुदसी मोन से रेसलान नित इस फरांदर सेलफ ओ एरो के पैसवा जो रहा फिर हों से इवने डर तक मिलियून और एन एसआरडी और 66.5 मिलियन एसआरडी ओ बखरूतिंग में दे जिसे ओवे के कि ओवे फेलो अपहाल करी। अब बोले हैगा मायन फन बेरमन इन डिस्ट्रिक्ट एन एक्सेट्रा बेड एरो तेज होरन। बोलो एरो में रहा जिस ग्राफ दैट वे दे दौरान में द सिंड्रोम। बोले हेड ओरायन सिंड्रोम इज ऑफ मिस्किन वर्थ है न्यू पार्स सिंड्रोम मा मिनिस्टर ओवे एरो के निकार के उधर देशवा एनडीपी फ्रैक्सी परमेश्वर केर इस फ्रैक फान सांपी अफ एंड स्टेल दैट एर गीन ग्रापा मुदन वर गमाकट में द टू टू स्पेलिंगन ऑफ वर्डन एज पार्स सिंड्रोम अंडर इज इट एंड सुक एक डू हेड रिस्टक en laten we het rustig houden, want als wij gaan beginnen, dan gaat het niet leuk zijn. Al dus, ja, Rabin Parmeester, ik naam moeilijk wel, hè. Imam en minister, Michelle Huur van RO, merkte op dat de commissariaten inderdaad meer middelen nodig hebben voor vuilophaal. Zij stelde achter de oproep van haar partijgenoot te staan. Vuilophaal voor RO betekent vuilophaal in alle districten met uitzondering van Paramaribo. Bulle de middelen zijn niet toereikend. 1 miljoen SAD per commissariaat is absoluut niet toereikbaar. Ik deel ook de mening dat de vuilophaal weer decentraal moet plaatsvinden. Ik erbaar mee bolle he. Want sap to mange paiso ook al lage awe dosto. Want paiso ook al lage aai. Tab dekho sap kaise apan kaam kare he. Aur sa doki sap uwi me dhar de raha. Aur uwi me se. Aur eru me aur isap terek na darai kaise. Uhi eru ne. Ka bolle uhi pe chhoor di se. Ne. Uwi lage. Jor fail uthawe he. Bahal fafan. Paramaribo. Ma wanika ke badul kare he. Mari janta. ये बातचीत है। तो अब हम जाए भैया, कोई भला कभी सोचे रहा कि रुसलान में ओ तो कितने लना मिली भैया स्कार सो ये है वांट एन फन द ग्रोस्ट एक्सपोर्ट रहा हस के और तेल के रुसलान जो हसत रहा वही अपन वापन जितना चीज किनत रहा मक्का करी से गा उक्रेन बनाई से लंबा लंबा लंबा लंबा ड्रोन बनाई से भैया जो हजारन किलोमीटर उड़ के जाए के अब उल्टा रुसलान के जो ओली रफिनार दे रही है सब दागे भैया इतना दागिश की अब एक्सपोर्ट छोड़ अब रुसलान के अपन तेल रही है पर जनता के लंबा लंबा रही है। जैसे हम लोग भी बहुत के तेज पे तिरस्कार से होते रहा कि हम लोग बेंसिन पंप लगे खड़ा होते ही तेल खात ऐसे ऐसे लंबा लंबा रही अब रेसलांत में हुई है। रेसलांत में भैया बोले है का ब्रांस्ट ऑफ द कॉर्टन दौर फॉर ड्यूरिंग द उक्रेन से अनफालन ऑफ ऑन द मेयर रशियन ओली रफिनार द रेन
in. Of bolle is bijna alle regio's zijn inmiddels limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in de hoofdstad Moskou staan lange wachtrijden bij de benzine stations. Maar ja, of ik er maar mee, Poetin après verklaar kreeg. Of Oekraïne bolle het jablik toe jagalawaan naar okie. Hamloke bolle tablik hamloke doro dagen. Want Oekraïne kake ze bij je banaai ze fabriek. Je gaan op een eigen drone banaan. Zelf export keren lagele Oekraïne. Op parka parka banaai ze ga jon hajaren. Jon makkelijk ze Oekraïne ze उड़के और जाए के अब रुसलान के उल्टे बम्बा देर करे भैया धुआं पे रुसलान में क्रिसिस फरखादरिंग भाई लेगा पुतिन हिलदारों फरला एगो क्रिसिस फरखादरिंग करी से और बोले हुग प्लास बत्रोकरिन ओवर द ब्रांस्टोफ तकोर्टन और बोले हेगा बकेन देश मान देत रुसलान द uitvoer van kerosine en benzine al in de ban बोले बे स्टेशनों staan wachtrijen mensen partij congres. Poetin sprak vandaag ook op het congres van de partij Verenigde Rusland. Daar zei hij dat het land momenteel een moeilijke tijd doorbracht, mensen. Maar daar ook van leert ki is het probleem in Oekraïne mee bhi hai bhaiya. Huwa to thanda mein sabke ghar ke daagi se hazaran tipik admi maral hai Putin daagi se. Admi log ke ghar mein farwar mein na raha, pani na raha, khana pina na raha. Ekar desh mein Oekraïne kari se ka ki huwa ab tel na hai. Ab president Putin baklaag kare hai. Ook over de druk van westerse landen die zijn land sancties opleggen. Auro kabule hega an Europa bhi sancties aflek karisega. Rusland mee Amerika bhi herstellen de afgelopen week weer sancties tegen Russische olie. Die sancties waren tijdelijk opgeheven toen er door de Iraanse blokkade van de straat Hormuz geen olie vervoerd kon worden. De EU versoepelde de sancties overigens niet. Poetin's toespraak kwam enkele uren na de Oekraïnse drone al van in de regio Krasnodar mee. Al hoe ik het met Maralwi heb. Brand uitbrak in een raffinaderij. Oude Zelensky Oekraïne kebolehega. Bole heb bekend dat ook een raffinaderij in de regio Jarolasvi was aangevallen. We zetten onze operaties voor die het vermogen van Rusland verzwakken om deze oorlog te voeren, schreef Zelensky. Obole elke lange afstand aanval is een vermindering van de middelen die de Russische oorlogsmachines heeft en een nieuwe stap richting vrede. Enkele dagen geleden Zelensky aan dat hij een plan voor een aanvalscampagne van 40 dagen had goedgekeurd om Rusland te dwingen. Bole dwingi kare hai ki tu jhagadwa rok hum log ke lage se bole ye hum doro daga baki jhagadwa na roke bhaiya o jana rukyo. तो अब तो तरी मनी तेल मिले है उहु ना मिली तब तो आदमी भूखे मरी दे स्वामी तो और इस्लाम अब दोरो लड़े है अब देखो भैया ती द्रियन फाइफ तक गो आदमी के पकड़ी से फ्रांकराइक में जोन इस सब के अंदर मिस ब्रेक मटेरियल डाउनलोड कर रहा फ्रांकराइक में भैया और फर्स्ट स्प्रेड कर रहा 33 आदमी को 37 से 79 यार तक बतावे डाउनलोड कर रहा kinderpornografische bestand op het internet. Dat is gemaakt door de beruchte Australische pedoseksueel Peter Scully. Bullen op gedownloade bestanden zijn beelden te zien van martelingen en verkrachting van 3 kinderen. Het gaat om 2 meisjes van destijds 11 en 12. Ego 18 maanden keer. Obbele de beelden werden in 2012 door een Scully gemaakt op de Filipijnen. Het materiaal circuleerde 14 jaar rond op het dark web. Op het eigen dus de 52-jarige Ukabena staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij werd 2015 Filipijn met moeke pakalise zijn. Oké, gevangenisstraf en mensenhandel. Oude verkrachting van minderjarigen kwam hij 2022 nog 129 jaar gevangenis bovenop. Ook zijn Filipijnse vriendin en 2 componenten werden schuldig bevonden aan kindermisbruik. Obolege opsporingssoftware download in Frankrijk werden gedetecteerd met hulp van Amerikaanse opsporingssoftware. Het zogenaamde Child Protection System. De arrestatie vond plaats in het departement
और बोले द स्पेशल अफडेलिंग फॉर द पुलिस इन ऑन द सुपमेंस। तो ये चीजें फ्रांकराइक के बारे में तो हम बोले आप लोग को हम बताई कि कैसे ये मिक्रांत भैया भगे मेरी अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के कपड़ी लोन भगे दसवा छोड़ के भैया मिक्रांतन बोले है स्पानिंग ऑन द इलिखान मिक्रांसिस आइट अफ्रीका लोपस नेल ऑफ न्यू अ न्यू एंटी मिक्रांसी बवीकिंग एज दैट मींस सोंदर गेल्डिग फॉरब्लाइवर्स कुनन het land uiterlijk 30 juni verlaten. In de verschillende gebieden worden huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Migranten uit onder meer Malawi, Mozambique en Zimbabwe slaan of vlucht Oesebra Zuid-Afrika mee. De regering van Mozambique meldt dat 5 Mexicaanse burgers zijn gedood. Over 29-jarige Admibi. Toen hoop ik zo'n bhag bhag te janen hè. Jaise Bangladesh ke Admibi, jaye India mee. लुकान रहा भैया जब से मोदी सरकार आए ले सब भंगले हैं ऐसे ही फ्रांकराइक यानी कि साउथ अफ्रीका के बातचीत हो रहा है फ्रस्टासियन आर्म वेकन बतावे हैं डेमोस्ट्रेशन फॉर ऑल लोग पर फन ओम खान जैन तो ये बात है साउथ अफ्रीका के दोस्तों कि वहां पे अब सब आर्मियन के भगे के है तो हमारे प्यारे प्यारे जनता अब तेल के प्राइस सका भइल है भैया बकिया तो आज एक और फिन दगा उल भइल है तो बोले दालंद ओली प्राइस बीट फॉर लिफ्टिंग मार ब्लेव क्रूशियल फॉर इकोनॉमियन सो आज गुयाना त्रिनिदाद एंड सुरीनाम बोले ये तेलवा सस्ता है कि देशों के कम तेल को में आए बोले ना ऑनट्विकलिंग जो इंटरनेशनल तेल के बारे में बोले इकोनॉम बोले गायना त्रिनिदाद तो वेको बोले तू कोमस्त के जो तेल उतरनामे मिले है बोले स्पानिंग है रोंद स्ट्रात हॉर्मुज में बोले लेकिन अफ्तनीमन की ओली ट्रांसपोर्ट ग्रोथन देर से हरफात बोले ये तेल ऑन फिन जाए लगल है तो बोले प्राइस सका हुई से ओली प्राइस इन द अफ्गलोपन दागन तुरख फालन नार द नीफो फॉर द रसेंट क्रिसिस इन मिडन ओस्टन बोले ये तेल वा खुल जैसे सस्ता हुई जैसे पैसा ना मनाई पे ये भैया तो कहा बोले ओली मार्क इंटरनेशनल के फोर्सेक्टक बोले है बोले अमेरिका ईरान मुखलक बोले फिनो elkaar gesprek begeel he, tegelijkertijd blijven beleggers alert om de straat van Hormuz, waar ongeveer 1/5 van de wereldwijde olie-export passeert, een van de belangrijkste knelpunten in de moderne energievoorzieningen blijft elke verstoring kan de olieprijs opnieuw sterk doen oplopen mensen. तो होई के भैया तो अबे न्यूज़ आप लोग को बताए थे अमेरिका फिर दागे शुरू कर दी से यानी रूसलांत यानी कि ईरान में दिस मोगलक दादी ओली प्राइस वेर ओम हाँ हो खान अलस इस मोगलक मेंसे तो दादी और लोग इस और एक बाप और बेटवा के बाद है भैया एगो नीदरलैंड्स एंड स्पेन्स पॉलिसी एगो फिर फिर तक यार के आदमी के और एगो ट्वीन ट्वीन तक यार के ओकर बेटवा के पकड़ी से ई सब ड्रग्स हैंडल करता पैसा वेतवास करता भैया बपुआ के स्पाय में पकड़ी से बेटवा के हालात में पकड़ी नीदरलैंड में बपुआ भैया स्पाय में से बन होके खोजा तो के घरवे में जाए के पकड़ी से तो यहाँ बताए गए हैं सर रेज द फाक इज स्पायन जाना था लुक्स लीफ हमारा सबके भैया और बोलेगा नीख न फिर तक यार का रूर मौन पे दत्रा और एगो एन अंतविन तक यार का फ्राउ अब का पाक तोग में से दानास वेट न फरदाखते न बेल की ओक आन खाओदेन ते इस अब के पैया ओनकफेर 5 मिलियून रहा फिर पंदन में वार्द फान ओनकफेर 5 मिलियून दार वेरन 5 फूर्टेगन अलस इस बसलाग गनोमें नीदरलैंड trof de politie ook contant geld van 1,5 kilo goud aan. Spanje nam de politie meerdere telefoons in beslag. Op collega 5 personen worden verdacht mensen. Op het aanwezig uit witwassen van criminele gelden 3 in Nederland. Opgepakt verdachten worden 2 juli voor gelijk natuurlijk mensen. Zo gaat het een beetje. Kala dhanda kariyo. Beko Iran ja, fin Qatar mee gesprek kare. जा है गस्प्रेक करे भैया कतार में वूस दाख के नर कतार ओम त प्रातन कि जितरा उ सब के तखूत फॉर फ्लोर भइले चाहे सब के छोड़े के दे से इन द वर्ड फॉर द इनांस मिनिस्टर बोले है स्टीव विटकॉफ
बतावे मंगलवार के समान आएंगे कतार में और वहां पे समान बातचीत करेगा मैं ईरान मेल द रखेरिंग फॉर द इमीरात ऑन द मिडल आर्स इज प्रीमियर कतार मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम अल थानी और कतार स्पेन ने अस पाकिस्तान बलांग रहे का रोल इन द रिलेशन सिचुएशन अमेरिका एंड तेहरान सो एक्स ploiteerden de twee landen samen een groot gasveld onder de Persische Golf mensen te abdeko kaisi hoe he or kaisi na hoe hamarjenta to ye baat hai hamare pyare pyare

आखिरी समाचार आप लोग को सुनाएंगे भैया सूरीनाम की ओर हम जा रहे हैं। फरियारी हुए भैया तो खबाक कटा है, खबाक कटा है सूरीनाम में बोले तार्थ कटा है। और यहाँ पे एगो आदमी अपन औरत और बिटिया के काटार दाख के रोज भैया ये बातचीत हुए है मिसांदल भैल है, ये मिसांदल भैल है भैया। फरियारी रहा एक बिटिया भैला 18 बरिस के तो ओकर फरियारी रहा तुतली फौ कनाल वेख के बातचीत है। एगो त्वेन फे तक यार के औरत के और त्वेन त्वेन त्वेन तक यार के बिटिया के बाप या आदमी भूखी से छुरी से भैया पहले ताकी भइल है वो द विसलिंग भइल है ट्यूशन द फ्रो एंड नमान उतरे में एस्कालेर हो गए झगड़वा इतना जाना कि छुरी से आदमिया औरतिया के भूखी से और बोले बिटियों के हाथ में भूखी से दोनों गैल है भैया और गैल है अने का बोले सिकन हिस में और बोले अख्तिन या रख दिया रखवास एफनील ओकर 18 बजे के फ्रीन भी आयला ओहू सब ऐसी दिन तो अमी माँ के ओहू सब में सांदल भइल है ओहू सब के चोट लगल है तो तु ये फिर तक यार रख औरत 22 बरिस की बिटिया एम्बुलेंस सब के ले गए है गांड फ्रॉ लिपस्टिक वंदन ऑफ ऑन हर बीन एंड्रो मार डॉक्टर वेन इन हर आर्म कस्टोकर ओवर द एनस्टेफान फॉर वार्निंग इज फॉर आल्सो नीड बकेन ना द इंसिडेंट फॉर द फर्दाखते द प्लांट्स है री वेग इन द ग्रेज ट्यूटा हरियर फन सेन फ्रॉ औरत ये के ऑटो लेके और उछल गए है। तो दोस्तों इसी गीत से है हम आज के समाचार आपको जो सुनाए हैं और खत्म करते हैं। 1 घंटा करीब हो चुका है दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार और प्यार भरी अदाब। सत श्री अकाल जॉनी नंबर 1 है हमारा नाम।

0: कहां।
1: कोई बता दे ये दिल है यहाँ और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्कर के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली और कहाँ चली, आप तो अपने जानते कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है, कहते हैं कितना हसीन है मौसम और मौसम कब हसीन होता है, जब अगर आपके दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है, तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा चाहे जो भी मौसम होगा लेकिन आपको हसीन जरूर लगेगी। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आपके साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम की ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आज़ाद का ये फिल्म नई खतीन 5/5 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फो वाले और जाने कहां, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

मेरे महबूब कयामत होगी, मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं, और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता की ओर हम बढ़ते हैं, जो भी महबूब मेरे के गाना है, पत्थर की सनम 1964 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: Film पत्थर का सनम, पत्थर के सनम नहीं कहती सीफ ने सस्ती इस गाना को हमने निकाला है जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं हमारे प्यारे सुनने वालों।
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, दो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथ ही लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है,

जिसे पद पे चला उस पद पे मुझे मुझे लता जी फिल्म के नाम है, यादगांठ से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों, हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार, उस दिन ये आंखें क्या होगा। सुनने वालों, आपने खुद ही सुना है, हम चलते हैं, ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में शमाई है। और ये फिल्म, ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे, मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और होल्डर बिरमन के साथ में और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना नीहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैथिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

देश है मेरा और ऐसा देश है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है। चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है। चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातों जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिल वाला। कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जाए, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सवार। आओ सुना जाए।

बस पालकी में होके और सवार चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जो आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जो किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवाननी और एक तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ऋषि कपूर देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी। फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चान कोई दीवाना है और ये चान कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेख होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और दिव्या भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

दोस्तों, और ये गीत क्या होगा दोस्तों? ये कुछ प्यार भरी गीत है, और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर अनतिलक उक्त बुलेस्त्रिफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक और खानी साथ और हो एक फिनमेंट और साथ और, या तो और गामान हो सकते हैं और गावुमन भी हो सकते हैं, जो भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ज़रूर ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है और मात पर हम लोग बनाकर बंधु जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ यारो कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें एजेंस कंतोर उर फन मांडाग टॉट फ्राइडाग फन 9 टॉट 5 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडियो का तार का नंबर 07-362-2077, या तो दफ्तर का तार का नंबर 07-365-2047 पर आप तार करें। जो भी रेडियो का काम हो, डेंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना हमारे प्रिय सुनने वालों, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो भी रहेगा। कंटिन्यू खिलत फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाएं। सभी जानकारी इसके बारे में बैलेट एजेंस कंतोर इरफान मांडाग टॉट फ्राइडाग अब द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स 07-365-2047 कंतोर पर फन 9-5, या तो आप तार करें op 07-362-2077 Studio Qatar का नंबर है। द्वारा के मुताबिक एक ही दम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के और हमारे प्रिय श्रोताओं, और कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे। मशहूर गाने वाला हमारे हॉलैंडेस का, जो कुछ दिन हुए हैं हम लोगों को छोड़ के ऊपर वाले के पास चले गए हैं, मैस्ट्रो शहीद वाहिद हुसैन के ब्यूटीफुल आवाज में मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।

0: सुंदर बयान है मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले बाय मास्टरो शहीद वाहिद हुसैन। अगला बयान एक और महान गायक हमारे हॉलैंडिस का, बोर्न इन पाकिस्तान, और कितने शोस दिए वो हमारे सुरिनाम देश में कि रोजाना लोग रेडियो पे इनके नगमे चलाते रहते हैं। है हेल पॉपुलर और नॉक स्टेट्स इन सुरिनाम हाउट मैन हैम दाखलक्स इन लीव मिट से प्रख्तिक स्टेम वर्सुक आन कॉलिक स्वान मै दी दत ओक मोगे डून। एक ड्राइव फाक निमुल्स फन हैम वंत मेरे तो ये जिगरी दोस्त था, दिल के करीब भी था। नरीम खान सुन सुन पुम पुम आओ नाचो एन अंदर स्टाइल फन देस माएस्ट्रो
1: हिंदुस्तान।

शाबाते वाह वाह शाबाश शाबाश महान गायक हमारे हॉलैंडिस का द ग्रेट नदीम खान फ्रॉम पाकिस्तान और जो अभी तक बहुत ही पॉपुलर है हमारे सूरीनाम देश में। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एक और मशहूर गायक हमारे हॉलैंडिस का जन्म तो हुआ है भारत देश में, शेखर कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर चटनी आप सुनेंगे कि प्रीतम प्यारे तू कहाँ बसत हो, अपसाइन शेखर कुमार स्टाइल।

वैश मशहूर गायक हमारे ऑल इंडीज का द ग्रेट शेखर कुमार जी। अगला बयान सुनने के जा रहे एक और मशहूर गायक ऑल इंडीज का, ऑल्सो बोर्न इन पाकिस्तान, और कितने सालों से गा रहा है मेरे ख्याल से फनफ 1983 tot heden, maestro Bobby Jacob, Zindagi ka Safar.

अति सुंदर दिल को छू लिया ये नगमा जो मैस्टर बॉबी याकब जी ने हम लोगों को सुनाया, क्या गला है और क्या गाता है। अगला बयान सुनाकर जा रहे हैं सुरिनाम देश का मशहूर गाने वाले दो निशा मदारन और किंग कॉलोनी मिलके सुनाते हैं आप सभी को खतरनाक।

Seeker Dangerous brada सुना दी आप सभी को मशहूर गाने वाली हमारे श्रीनाम देश का नाइटिंगेल निशा मदारन और साथ दे रहा था द रैप किंग फ्रॉम सुरिनाम किंग कॉलोनी हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है जोर तोर से आप सरनामी संगीत सुन रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने और कुछ इस जमाने के विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने इंसानियत, मनुष्य, मैन सहित के बारे में कुछ लिखे हैं यारों, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं, तो जरा गौर फरमाएं। अर्ज किया है श्री राल्फ वाल्डो एमर्सन, अमेरिकांस डिक्टर एंड फिलोसोफ, 1803-1882। और राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा है मनुष्य के बारे में यारों की, हेट वॉज एन खुद रात दी एक एंस आन एन यंग मैंस होर द गेवन, डू आल्टेड datgene wat je bang bent te doen. Akemekaasri Simon Vestdijk, Nederlands schrijver, 1898-1971. Over Simon Vestdijk nekha hij, hoe ouder de mens wordt, des te meer wordt zijn verleden van werkelijke gebeurlijkheden geschaduwd door een verleden van gemiste of althans niet benutte kansen. Sri Nelson Mandela जी ने भी कुछ कहा है, South Africans advocaat, politicus en anti-apartheid strijder, 1918-2013. Ook Nelson Mandela ne कहा है, ieder mens of organisatie die mij probeert te beroven van mijn waardigheid zal verliezen, omdat ik mijn waardigheid voor niets en niemand zal prijsgeven. Ja. Max Croisset, Nederlands

0: Metia.
1: Egdan shava shava shava shimshurga ekamare surinandeska maestro Prashant Ram Chetan ji ke beautiful awaaz mein iti sundar bayan aap sun rahe hain. Suna music by the juniors from Suriname. मशहूर गाने वाली हमारे हॉलैंड देश का रोटरडैम शहर का द नाइटिंगेल संगीता भगेलू जी के ब्यूटीफुल सॉन्ग हंसी बन गए

Fusong Hollandaise Rotterdam शहर का Nightingale संगीता भगेलू जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान आप सुनेंगे सुरेन भगवान दीन के आवाज में यानी मेरा ही आवाज में। दना हेमंत कुमार जी का ये कॉफरेट सॉन्ग फूलों के हार, म्यूजिक बाय माएस्ट्रो ज्वाला।

का प्यार सुरेन भगवान दीन यानी मेरे ही आवाज में ये कॉफरेट सॉन्ग आप सुना, म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय माएस्ट्रो ज्वाला। तुम्हारे विप्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, आप ही का तो ये आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, आप भी जाइए, कुछ खाइए, कुछ पीजिए और साथ ही साथ प्रोग्राम को जरूर सुनते रहना, मजे लेते रहना। आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत यार।

0: बात है, वाह वाह, महान गायक, जबरदस्त गायक, हमारे सुरिनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार, उस्तादों का उस्ताद रॉबी उदित राम जी। अगला बयान सुनाने के को जा रहे हैं आप सभी को हॉलैंडीज का द किंग ऑफ बैठक गाना। कुछ सालों पहले ये नौजवान कलाकार को ये टाइटल हमारे यहाँ के संगीतकारों ने दिया है, द वन एंड ओनली संदीप बदलू जी, अब ना हो ये जवान।
1: ए बुढ़िया सुनना बुढ़िया, तू इतना मोदो ओदो करे है, तू सोचे है ये सब कर तू जवान हो गई है, सुन बत

Shabash, shabash, shabash, the king of bite, Ghana from Holland, Ustad Oka Ustad Sandeep Badlu, ke beautiful awaz me, ye ati sundar bayan aap shrotaon ne suna aaj ke is haseen program mein jo aap shrotaon ke samne live broadcast ho raha hai Eden House Shahar se. अगला बयान एक और महान जबरदस्त गायक फ्रॉम द 70s 80s उस्तादों का उस्ताद देसी रघु सिंह सुनाते हैं मजेदार सॉन्ग है भैया तेरी पतली कमरिया क्या बात है एंजॉय

कि हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का फ्रॉम द 70s 80s उस्तादों का उस्ताद द ग्रेट देसी रघु सिंह जी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है हमारे प्रिय श्रोताओं जो तोर से आप सरनामी संगीत सुन रहे हैं। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक फ्रॉम द 70s 80s मैस्ट्रो ध्रुव ननकू जी सुनाते हैं पतर पतर

जबरदस्त गायक फ्रॉम द 70s 80s, उस्ताद ध्रुव ननकू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने श्रवण किए। अगला बयान द चटनी क्वीन एंड द बैठक गाना क्वीन फ्रॉम सूरीनाम, जबरदस्त गाने वाली मोतीमाला भोला सिंह, और वो सुनाती है नई झुलनी का।

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश, जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का द बैठक गाना एंड चटनी क्वीन फ्रॉम सूरीनाम मोतीमाला भोला सिंह जी। तो श्रोताओं, कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य इंसानियत के बारे में कुछ ज्ञान के बातें लिखे हैं यारो, जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। ये आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ जरूर हम लोग सीखेंगे। अर्ज किया है यारो श्री बर्तोल्ट ब्रेख्ट, डच ओसनरेक्स Schrijver 1898-1956, Bertolt Brecht ne kaha hai, manushya yani hum logo ke bare mein gyaro ki, de mens is echt dood als niemand meer aan hem denkt. Phil Bosmans, Belgische pater en schrijver, 1922-2012. Aur Phil Bosmans ne kaha hai, manushya ke bare mein gyaro ki, de mens is een wandelend wonder, enig, uniek en onvervangbaar. Henry David Thoreau, Amerikaans schrijver, 1817-1862. Over Henry David Thoreau, Manusje Kibarimiaruki, de mens is geboren om te slagen, niet om te falen. Johann Wolfgang von Goethe, Duits schrijver en dichter, 1749-1832. Oh, Johann Wolfgang von Goethe, ik hahe, Manusje Kibarimiaruki, de mens moet wel blijven geloven dat het onbegrijpelijke onbegrijpelijk is, anders ging hij niet verder met onderzoeken. Søren Kierkegaard, Deens filosoof, 1813-1855. O, Søren Kierkegaard.

शाबाश शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का आईडीआर सेवतख तख्तख उस्ताद ते सनातन जी फ्रॉम निकेरी। एक और मशहूर गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का आईडीआर सेवतख तख्तख चंद्रवती कन्हाई जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे कुछ बुढ़ा और कुछ मेहररुवन के बारे में। बुढ़ा के

महान गायक हमारे सूरीनाम देश हॉलैंड देश का उस्तादों का उस्ताद और बैठक गाना का महागुरु आचार्य श्री सत्यानंत रेखा जी के ब्यूटीफुल मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तुम्हारे पिपरी श्रोताओं अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

शाबाश शाबाश उस तारों का उस्ताद, महान गायक हमारे सुरीनाम देश का और एक जबरदस्त बैठक गाना का महागुरु द ग्रेट रॉबी उदितराम जी। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का, वो भी एक म्यूजिक खानदानी खानदान से यानी म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करता है, शंकर चंद्र भोस, जबरदस्त ढोलक प्लेयर और बैठक गाना का एक जबरदस्त गुरु, और वो सुनाते हैं आप सभी को अब तो बहन लागे ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल हमारे सरनामी संगीत के लॉफर्स के लिए।

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक ढोलक प्लेयर उस्तादों का उस्ताद शंकर चंद्र बोस जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। बोले आने बोले ना अम रैया, ये कह रही है उस्तादीन श्रीमती बिजावती चैतू।

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश जबरदस्त गाने वाली हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का बैठक गाना का उस्तादीन श्रीमती विद्यावती चैतू गौर महान गायक हमारे सुरीनाम देश का द लेजेंड फ्रॉम सुरीनाम। अगर बैठक गाना के क्षेत्रों में हम लोग बात करें तो उस्तादों का उस्ताद महान महा महा महा बैठक गाना का गुरु और उस्तादों का उस्ताद पंडित श्री राम प्रसाद राम खेलावन जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप ये अति सुंदर बयान को सुनिए।

उस्ताद महान गायक द लेजेंड फ्रॉम सूरीनाम पंडित राम प्रसाद राम खेलावन जी। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, जोर तोर से आप सरनामी संगीत सुन रहे हैं। पहला अध्याय का हमेशा की तरह बैठक गाना। एक और महान गायक हमारे सूरीनाम देश हॉलैंडिस का और जबरदस्त बैठक गाना का महा महा गुरु उस्ताद का उस्ताद श्री रामदेव चैतू का द बेस्ट सॉन्ग एवर हो प्रीतम प्यारे।

हजारों का अवसाद महान गायक हमारे सूरीनाम देश का चैंपियन सिंगर्स द वन एंड ओनली द ग्रेट श्री रामदेव चैतु जी। तो हमारे भी प्रिय श्रोताओं, वक्त हो गया है ना कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने के और इस जमाने के कुछ विद्वानों ने, पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। यारो, यही आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से जरूर कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखेंगे। तो जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है श्री गेरहार्ड रीफ, नीदरलैंड स्क्राइवर एंड डिक्टर, 1923 tot 2006। और गेरहार्ड रीफ ने कहा है हम लोग के बारे में यारो की, अस इक म द वेदर गबोर्त गॉड्स फोरस्टेल दन सीन इक दी नीट इन द मेंस, हेट सौ इन एन लम कुनन सैन, मार इक विंड एन एजल लीवर। वात एन वर्गलाइकिंग सेग। आगे में कहा है श्री जेम फीबिग, अमेरिकांस कॉलमनिस्ट ओक पी एस फॉन जेम बर्लिन। और जेम फीबिग ने कहा है मनुष्य के बारे में आ रुकी, अल्स यू मैट फॉलडूनिंग ऑप यू लेवन तरुख ब्लिक्ट बसेट यू एन फन द कॉस्टबारस्ट गाफन फन द मेन्स एन सेलेक्टिव गेहूगन। Atheïsme is meer in de lip dan in het hart van de mens, zeker hij Sri Francis Bacon, Engels filosoof en staatsman, 1961-1626. Lao Tse, Chinees filosoof, leefde rond 2600 voor Christus. Ja, dat is heel oud hoor. Jee, de deugdzame mens begeeft zich niet in redetwisten. En wie met argumenten redetwist, is niet deugdzaam. Je kan hij, Chinees filosoof Lao Tse. Alfonso de Lamartine, Frans dichter, staatsman en geschiedkundige, 1790 tot 1869. Our Alphonse de Lamartine kahai manushya ki bare mein roki, the mens is een gevallen god die zich de hemel herinnert. Friedrich Nietzsche, Duits dichter en filosoof, the mens is een koord geknoopt tussen dier en übermens, een koord boven de afgrond. Alfred de Musset, Frans schrijver, 1810-1857. De mens is een leerling, die smart zijn meester, en niemand kent zichzelf voordat hij heeft geleden. Plato, Grieks filosoof, 447 tot voor Christus. Al Plato nekaha hai manushya ki barme aruki, de mens is een speeltuig van God, door hem bedacht. Boris Pasternak, Russisch schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur, 1958. Leefde van 1890 tot 1960. De mens is geboren om te leven, niet om zich op het leven voor te bereiden. Laatste van vandaag, Kahai Albert Camus, Frans schrijver, essayist en Nobelprijs literatuur 1956, leefde van 1913 tot 1960. Albert Camus, Kahai, Hamlogo, Janne Manusje Kibarme. De mens is uit het hout gesneden, waarvan men brandstapels maakt. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप कुछ कहावटे कुछ उदाहरण सुना जो मनुष्य के बारे में जाता है। यू हैव नॉट कुन लुइस्टर नान पार सेर लेर रहे के सितात दी ओवर द मेंस हैट हिंग यश उम्मीद। लेकिन इन बातों को मैं आप श्रोताओं को सुनाया कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखते रहेंगे। तो अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एक और नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंड देश एम्स्टर्डम शहर का
मशहूर परिवार से बिलोंग करता है, वरुण नंदा के परिवार है, और ये है विशाल नंदा, ढोल पे है वरुण नंदा, और विशाल सुनाता है आप सभी को चोरी चोरी।

Live recording up Srotonis, suna Chori Chori from the Belmer Heights from the family Nanda, Varun Nanda or Vishal Nanda, ye ati Sundar Bayan live up Srotonis kesema me pesh kya. अगला बयान जरा दिल थाम के बैठिए, अब आ रहा है आप श्रोताओं की सेवा में हमारे हॉलैंडिस देन हाशर का द लायन ऑफ बैठक गाना। उस्तादों का उस्ताद श्री देवेंद्र शिवनाथ जी अपने जवानी के बारे में वो कुछ सुनाने वाला है।

Shabash, the Lion of Beit Ghana from Den Haag, Holland. जबरदस्त गायक हमारे बैठ गाना के. और अगला बयान देखता हूँ वक्त तो ये साथ ही साथ आखिरी बयान है आज के इस अति सुंदर प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं खास करके फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से. और वो सुनाने वाले हैं पूज्य पिताजी को तो अभी आप सुन चुके हैं. ये शंकर चंद्र बोस जी का सुपुत्री है प्रमीला चंद्र बोस. दिल डड़े

शाबाश शाबाश, मशहूर गाने वाली हमारे हॉलैंडेस रोटरडैम शहर का डेग्रेट प्रमीला चंद्र बोस जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो हमारे प्रिय प्रिय सज्जनों, यहीं तक था आज का ये सरनामी संगीत का प्रोग्राम, पहला अध्याय का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, आप ही का तो आवाज़ है, जनता का आवाज़ है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज़ है। आफ्टर द ब्रेक।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशअप द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशअप। चलिए मिलकर सुनते हैं।

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिलबा का क्याओ। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलिया भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीन बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेशा से बॉल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's that smirk?
1: Where's what?
0: What's this here, so? Oh. Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had an emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेशा शिपोह की आवाज़ में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में केनेथ सालिक को सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

अभी आप सुन रहे थे काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल ने, फ्रॉम द मूवी बाहर आने तक। इसी फिल्म से हमने ये गीत पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। और जरा सा हम देखें, जी हाँ, लोग कहते हैं टाइम विल हील एवरीथिंग, लोग कहते हैं टाइम विल हील एवरीथिंग, गलत कहते हैं। कुछ गम ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर सकता। तू तक तू तक तू तक तूतिया, आई लव यू, फ्रॉम द मूवी घर का चिराग।

अभी आप सुन रहे थे तूतक तूतक तूतक तूतिया, आई लव यू, और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। मैंने तुझे देखा है कहीं पहले, याद आता नहीं है कब कहाँ। फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। आपको सुनाने वाले हैं कंचन और नितिन मुकेश जी।

अभी आप सुन रहे थे, मैंने तुझे देखा है कहीं पहले, नितिन मुकेश के साथ में कंचन जी आप सभी को सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी मीठा शहर से हमने पेश किए हैं सुन ले मेरी लैला, यानी फिल्म का नाम है सुन मेरे लैला, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ विकी आई लव यू।

अभी आप सुन रहे थे ओ विकी आई लव यू फ्रॉम द मूवी सुन मेरे लैला से हमने पेश किए हैं। क्या आसमान गिर जाएगा दो चार घूंट हम पी ले तो, फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से हम पेश करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से, क्या आसमान गिर जाएगा जो चार घूंट हम पी ले तो। एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते और आपको सुनाने वाले हैं आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी जी। चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: Thank you.

अभी आप सुन रहे थे पूछो ना यार क्या हुआ। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है बाबला और कंचन की आवाज़ में। बोलो बोलो कुछ तो बोलो।

0: बाबला और कंचन जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। और दहिया मोरी लेले लेले नंदलाल अभी आप सुन रहे थे। अपनी नेकियां छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। और ये गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी सनम तेरी कसम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, ख़ास करके उन सभी के वास्ते जिनका नाम निशा है। निशा
1: हसीन है और जवान भी है जिसका इंतजार है।

श्री घोषाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। फ्रॉम द मूवी बेवफा से हम पेशकट है आप सभी के वास्ते, और आपको सुनाने वाले हैं अभिजीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बेवफा से हमने पेश किए हैं इश्क छुपता नहीं छुपाने से। एक और गीत हम पेश करेंगे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से आप सुनेंगे मैंने सोच लिया।

अभी आप सुन रहे थे मैंने सोच लिया फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते हम प्यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी। हाँ मैंने भी प्यार किया है कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

शानू के साथ में अवका यज्ञिक आपको सुनाने वाले थे हम यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया है। वो लड़की बहुत याद आती है फ्रॉम द मूवी कयामत से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं और आपको सुनाने वाले हैं कुमार शानू के साथ में अवका यज्ञिक।

वो लड़की बहुत याद आती है। अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू के साथ में अलका याग्निक, आपको सुनाने वाले थे। भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आपके प्यार में हम सवरने लगे। ओका यज्ञिक आपको सुनाने वाले हैं।

के प्यार में हम सवरने लगे अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। दिल मेरा तोड़ दिया उसने पूरा क्यों मानू फ्रॉम द मूवी कसूर से हम पेश करते हैं।

0: मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो।

अलका याग्निक की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कसूर से हमने पेश किए हैं। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानू। क्रिमिनल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। इस बार हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवीज, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते गली में आज जान निकला। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

ये तो आया तेरी याद गली में आज चांद निकला। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में, फ्रॉम द मूवी सखम से हमने पेश किए हैं

होता है सितारों का सफ़र, और सितारों का सफ़र में आज शाम के प्रोग्राम में बप्पी लहरी द ब्लिंग ब्लिंग सांगर म्यूजिक कंपोजर और साथ ही साथ म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसेंट भारत का आलोक्स अपरेश लहरी, उसका असली नाम यही है दोस्तों, 20 नवंबर 2023 में पैदा हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लोग बपीता के नाम से जानते पहचानते हैं, पप्पी लहरी के नाम से लोग भी उन्हें पुकारते हैं। वो एक सांगर था, कंपोनिस्ट, प्रोड्यूसर, प्लाटन प्रोड्यूसर वगैरह वगैरह। पॉपुलर था यार तख्त नीख तक में बंगाल, तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों में। पिता अपेश लहरी और माँ बंसूरी लहरी, ये दोनों सांगर और म्यूजिकांत थे। बप्पी या मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग माता पिता का एक ही लड़का था, एक ही बेटा था, और 19 साल के उम्र में इन्हें उनका मामा जी या मामू श्रीमान किशोर कुमार, मशहूर गायक किशोर कुमार, बॉम्बे ले गया। पहला हिंदी फिल्म जहां पर वो म्यूजिक कंपोज किया वो था नन्हा शिकारी जो नीखंटिंग द्रियन सी फिल्म तक में बना, और पहला म्यूजिक कंपोजिशन उसका था तुम ही मेरा चंदा, ये गीत माइटी मुकेश ने गाया और सुलोचना पंडित के साथ भी जाना कहा है ये सॉन्ग पेश किया। मैं आप सभी के सेवा में ये सॉन्ग पेश करता हूँ, बप्पी लहरी एंड सुलोचना पंडित।

Of disco, disco की बपिता या बपिलहरी मिथुन को बहुत से मदद किया फिल्मों में दोस्तों. बात यह है कि मिथुन का बीबी जोगिता बाली वो चला गया, नहीं नहीं किशोर कुमार का बीबी जोगिता बाली वो चला गया मिथुन के साथ, तो किशोर कुमार ने बंद कर दिया मिथुन के लिए गीत गाने को. तो बबीता ने मिथुन को बहुत से मदद किया. जब मिथुन तब पे आया था ये बबीता का कारण हुआ. और फिल्म डिस्को सिंगर डांसर आपको मालूम होगा दोस्तों, ये फिल्म आपने जरूर देखे होंगे. उस समय डिस्को का समय रहा और हर एक गीत जो डिस्को से चलते थे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनते थे. मैं पेश करूँगा डिस्को डांसर का सॉन्ग आई एम ए डिस्को डांसर, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर पप्पी लहरी.

ब्लेम ब्लेम बप्पी लहड़ी का एक दूसरा गीत है, बम्बई से आया मेरे दोस्त आपकी खातिर फिल्म का नाम है, जिसमें विनोद खन्ना और रेखा ने काम किया मिस्टर ब्लेम ब्लेम बप्पी लहड़ी के आवाज में।

मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के घर पर इनकम टैक्स वाला छापा मारा दोस्तों, और उसका जितना सोना है सब इकट्ठा करके तौला तो लगभग 2 किलो का सोना उसके पास, लेकिन हकीकत में लोग कहता है कि बप्पी लहरी के पास और सोना है, लगभग 4 किलो का सोना उसके पास है। बप्पी लहरी मिस्टर बबीता फिल्म डिस्को डांसर का एक सॉन्ग है जिसमें बप्पी लहरी ने म्यूजिक डायरेक्ट किया। जिमी जिमी आजा आजा आजा।

फिल्म डिस्को डांसर का एक दूसरा सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ। गायक है पप्पी लहरी और म्यूजिक भी डायरेक्ट किया है पप्पी लहरी। याद आ रहा है तेरा प्यार कहा हम कहा, पप्पी लहरी की आवाज़ में आप सुनेंगे।

हैप्पी लहरी पपीरा के नाम से भी लोग जानते पहचानते थे मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग। जब पप्पी जी कहीं लाइव शो पे जाते थे तो हमेशा सबसे बेस्ट सांगर या सांगरस को जेबी में अपन गटे में से एक माफ कीजिए मैंने कहा जेबी अपन गटे में से एक चेन एक केटी निकाल कर और तोहफा देता था। ये काम करता था मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग पपीता। पप्पी लहरी का एक दूसरा सॉन्ग है आशा के साथ, यार बिना चैन कहा रे।

फिर लहरी निकली, ड्रीम तक तक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का प्राइज पाया, फिल्म शराबी में उसके बाद नहीं थी इन नहीं तक, और तुए जैसे तारक में भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हुआ पप्पी लहरी। अमित कुमार और एस जानकी के आवाज़ में आप गीत को सुनेंगे, जिसका कंपोजर है, इस गीत का कंपोजर है मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग।

जहाँ जा

सितारों का सफर आप सुन रहे बप्पी लहरी। बप्पी लहरी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उसके बप्पी लहरी का एक रिकॉर्ड भी उसके पास है, 12 सुपर हिट फिल्मों में म्यूजिक दिया जितेंद्रा का फिल्म में। नेहरू सेशन तक के बाद जब उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उनका नाम आया, इसलिए कि 180 नंबर्स एक साल के बीच में 180 नंबर्स ये पेस्ट किया। और दुख की बात यह है दोस्तों कि बप्पी लहरी का मृत्यु 15 फरवरी 2020 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

सुनी मेरी सुनी सुनी, एक दूसरा सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सॉन्ग है दोस्तों। और ये गीत, ये फिल्म शूटिंग, इसका शूटिंग हुआ है हरियाणा, इंडिया का एक गांव है, एक शहर है हरियाणा। वहाँ पर शूटिंग के समय जब शाहरुख खान काजल शुरुआत किया इस गीत जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो ये गीत का शूटिंग के समय वहाँ गांव के लोग, वहाँ के जो बसिंदा थे सब आकर घेर लिया और हल्ला मचाया, शोर मचाने लगा। तो जो वहाँ का फिल्म डायरेक्टर था उसको प्रॉब्लम था, वो ये शूटिंग नहीं कर सकता था। तो आमने सामने बैठा था फिरोज खान, मशहूर एक्टर फिरोज खान वहाँ शूटिंग के जगह पर भी बैठा था। तो ये उठ के गया है और ये हरियाणी, ये हरियाणा का लोग जो है उस सभी से हरियाणी भाषा में बात किया, सभी को भाई बनाया। तो जाकर शाहरुख खान और काजल ने ये गीत को प्लेबैक किया, तुझे देखा तो जाना सनम।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वाला दर्भड़ गीत ब्रोकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला डर भरा गीत जिन्हें हम भूलना चाहे, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं माइटी मुकेश की आवाज में।

खुशी, खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसके हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

जब तुम पास थे तो हरदम यही सोचता था कि तेरी कदर नहीं करता। और आज जब तुम मेरे पास नहीं तो एहसास होती है कदर हमेशा से थी, मगर तुझे ना खोने के यकीन ने अंधा किया था।

कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं मेरे इस दुनिया में के बाद अब की बार तेरे दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले माइटी मुकेश।

0: क्या हुआ तेरे और अदर भर गीत ब्रोकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है।
1: दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला
0: फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो से कराना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 2 फिर से 5 पर आप तार कर सकते हैं।

0: ही ना रहे हम महका करेंगे। आरंभ होता है सितारों का सफर, और सितारों का सफर में आज के प्रोग्राम में अमरीश पुरी के बारे में कुछ बातचीत होगा।
1: सिर्फ दिल की जमीन है याद हमको।
0: अमरीश पुरी का जन्म 22 को लाहौर पंजाब में हुआ। इनका असली नाम है अमरीश लाल सिंह पुरी। अमरीश पुरी एक बेस्ट विलियन एक्टर के अलावा अच्छे रोल भी करते थे। वो शेखर कपूर का की फिल्म हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगाम्बो के नाम से बहुत मशहूर हुई। ये फिल्म जो नीलकंठ सिंह तख्तक में बनी थी, और इसमें अनिल कपूर का होफ रोल था। अमरीश पुरी यानी शास्त्रक में इंडियन थिएटर्स में काम का शुरुआत किया। उस वक्त वो सचदेव और गिरीश कर्नाट के साथ भी काम करते थे। अमरीश पुरी एक वेस्टर्न फिल्म जो निकनी फिरन तख्तक में बना था, वो स्टेफन स्पीगलबर्ग का इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डून। इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम मोला राम था। अमरीश पुरी भी फिल्म बादल में काम किया। उस फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूंगा।

अमरीश पुरी के भाइयों भी एक्टर थे, जैसे चमन सिंह पुरी और मदन पुरी, और एक छोटा भाई जिनका नाम हरीश पुरी, और एक बड़ी बहन जिनका नाम थी चंद्रा कंटा। अमरीश पुरी शिमला के बीएम कॉलेज, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ अपना पढ़ाई किया। अमरीश पुरी की शादी नहीं सीवन फेस्टिक में उर्मिला देवी के साथ हुई, और इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे के नाम राजीव और बेटी के नाम नम्रता। अमरीश पुरी बाद में बॉम्बे आया, जहाँ इनके भाइयों फिल्मों में काम करते थे, और ये भी उन्हीं के तरह भी फिल्म एक्टर बनना चाहता था। अमरीश पुरी एक स्क्रीन टेस्ट के बाद नौकरी किया स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। उसी वक्त ये पृथ्वी थिएटर्स में एक नाटक में भाग लिया और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। निगरिंग निगरन सीफन तक के बात है। अमरीश पुरी ने फिल्म साधना सरगम का और अमित कुमार का सॉन्ग है, और फिल्म सपना का एक सॉन्ग दोस्तों, एक ओल्ड सॉन्ग है, और इसमें नया भी मिलाया गया है। खुद सुनिए आप।

अमरीश पुरी, अमरीश पुरी जब 40 साल के थे तो अमरीश पुरी ने अनेक फिल्मों में एक्ट किया, जैसे हिंदी फिल्में, कनाडा, मराठी, हॉलीवुड, पंजाबी, मलयामी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अमरीश पुरी काम किया। अमरीश पुरी बॉलीवुड सिनेमा में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी रोजाना दोस्तों उसका एक काम था, लगभग 2 या 3 घंटे तक अपन आवाज़ का प्रैक्टिस करता था। उसका आवाज़ जो है आप जानते हैं अमरीश पुरी का एक अहला, एक अलहदा, एक अपर्त आवाज़ थे, और ये आवाज़ वो हमेशा रोकने के लिए 2 या 3 घंटे तक प्रैक्टिस उसमें उफन करते थे। अमरीश पुरी इसे तो कई अवार्ड भी पाया। निजी आक्तन शास्त्रक में महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा कॉरपोरेशन अवार्ड पाया, और भी और ज़्यादा अवार्ड अमरीश पुरी ने पाया। एक सॉन्ग के बाद मैं आपसे और अवार्ड का नाम लूँगा। फिल्म करण अर्जुन का सॉन्ग है जिसमें अमरीश पुरी जोर तोर से काम किया।

निखिलती निखिल सीफन तक में अमरीश पुरी थिएटर संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। उसके बाद निखिल सेशन तक तक में फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फिल्म मेरे जुंग में निखिलती इन निखिल महाराष्ट्र स्टेट गौरव पुरस्कार अवार्ड पाया। निखिल सीफन निखिल तक में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म घातक में निधि अख्तर निखिल के फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड पाया फिल्म विरासत में। निखिल तीन द्री निखिल तक में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म मुस्कुराहट में। निधि फिर निखिल तक में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म गर्दिश में। निधि सेशन निखिल तक के बाद है जब फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड पाया फिल्म करण अर्जुन में। निधि निखिल निखिल तक में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म कोयला में। उसके बाद 2002 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म गद्दार एक प्रेम कथा। दुख के बात यह है दोस्तों कि अमरीश पुरी का मृत्यु निखंतिंग नहीं नहीं 12 जनवरी 2005 को बॉम्बई महाराष्ट्र इंडिया में 72 साल के आयु में हुई। पत्नी उर्मिला देविकार और बेटी राजीव और नम्रता को पीछे छोड़कर चले गए। अमरीश पुरी दुनिया में नहीं है, लेकिन अमरीश पुरी का नाम जब फिल्मी दुनिया का नाम लिया जाएगा तो अमरीश पुरी का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाएगा।

0: सुनो सुनो ए भाइयों बहनों,
1: हाय हाय, सुनो सुनो भाइयों बहनों,
0: रे सांभलो ओ

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: सीने में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोपेयर्स
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है।

आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बात लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह क्या आवाज है मिस्टर जॉनी बच्चू के आवाज में भी आप गीत को सुना रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं, फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात्रि कली तो वादा किया है एक बार फिर खाब में आने को। दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा, रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

पहुंचे हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो पाहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 8 फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: Stani Radio.
1: आवारा हो ये सुंदर सा इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए। तुम हमसे बदलते हो, तुम हमसे बदलते हो तो तुमसे भी कोई बदलेगा, तुम हमसे बदलते हो तो तुमसे भी कोई बदलेगा। यही बदला होता है हर बदल

मौलवी साहब की आवाज़ में सुने, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। इस बार सुनेंगे राही मिल गई राहों में।

फिर कोई पछताएगा। जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए, जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए, कोई था उन

शिशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में फिल्म दिल देखे देखो, उसी मशहूर फिल्म से ये सुंदर सुंदर गीत आप सुन रहे हैं। मन में विश्वास और संदेह एक साथ नहीं रह सकते।

हो साथिया हो बेलिया सुना दी आपको लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी ने। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। किसी की नज़र ना लगे आपको, किसी की नज़र ना लगे, लगे तो बस लंबी उम्र की दुआ लगे आपको।

सफ़र छोटा ही सही, सफ़र सफ़र छोटा ही सही, मगर यादगार होना चाहिए। और रंग काला ही सही, मगर वफादार होना चाहिए।

फिल्म ब्रह्मचारी रफी जी की आवाज़ में एक अच्छा इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। एक अच्छा इंसान ज़रूर बने, पर इसे साबित करने के लिए अपना समय मत बर्बाद करना।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म का नाम कारवा। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, हे ईश्वर जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई, देकर और जो कुछ ले लिया है

जी करता है बस सुनते ही रहे कि जब से तुम्हें देखा है आँखों में तुम ही तुम हो। रफ़ी और आशा भोसले जी ने सुना दी फिल्म का नाम घराना, और इस फिल्म में जो अपना किरदार निभाया है राजेंद्र कुमार जी और आशा पारेख। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है, कभी कभी खुद की अपने आप की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। जीवन में कभी ऐसा मोड़ आता है कि हम वाकई में रुक जाते हैं, थम जाते हैं, सोचते रहते हैं कि हम क्या थे और कहाँ आ गए। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। समय वक्त हमारे हाथ में नहीं है, देखते देखते हम बचपन से कब दीनार हो जाते हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और दीनार होने के लिए भी बड़ा सौभाग्य होता है, हर किसी को ये नसीब भी नहीं होता है। तो आप एक नसीब वाला है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, जीवन हंसते में खुशियाँ में बिताते रहे। हर एक पल का जरूर से

मेरी आवाज़ के सुनने वालों, प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए लता जी और रफी जी की आवाज़ में

आ रही है, सुनाए आपको लता और रफी जी एक बार फिर, और वही मशहूर फिल्म मैं चुप रहूंगी से निकाला गया यह सुंदर सा गीत। और सुनने वालों, आप हो जो गीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से फाउन हिंदुस्तानी आपके लिए ये सुंदर सुंदर सा गीत जो सेलेक्ट करके रखी है

कितना रोमांटिक, कितना प्यार भरे ये सुंदर सा गीत जो आपने सुने। जी चाहता कि बस सुनते ही जा, सुनते ही जा, सुनते ही जा, जी नहीं भरता ऐसे ही सदाबहार गीतों जो आपके लिए यहाँ से सिलेक्ट करके रखी गई है, आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम से तैयार करते। हे संगीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से लेकर चलते हैं एक बार फिर ऐसे ही सुंदर गीत, और इस बार है मन्ना दे लता जी के साथ में।

सुनाए आपको मन्ना दे और साथ दे रही थी लता जी। बिल्कुल आपने सुने सही। आज ही जी लो, आज ही जी लो खुल कर यारो, आज ही जी लो खुल कर यारो, कौन जाने कल की क्या कहानी। हंसो मुस्कुराओ, हंसो मुस्कुराओ, फिर न होगी ये दिन सुहानी।

चंपा और सुनतारा, लता और किशोर जी ने सुनाए फिल्म का नाम है अपना देश। जी हाँ, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो। जी हाँ सुनने वालों, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो, मीठे बोल बोलते रहो, रिश्ते नए बनाते चलो। जीवन की कहानी को रंगीन बनाते, सजाते और संवारते चलो। क्या लाए थे जो हम लेके जाएंगे।

जीवन के दो पहलू है। हाँ, जीवन है दो पहलू से बनाए हुए, जैसे रात और दिन, आज और कल। और कह रहा है कि मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा ही है।

कहते हैं कि जिंदगी में ना जाने कौन सा बात आखिरी होगी, जिंदगी में ना जाने कौन सा बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो यारो एक दूसरे से, मिलते जुलते बात करते रहो एक दूसरे से, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी।

जाने ना। लता जी से आपने सुने फिल्म का नाम इंतकान, इंतकान सुनने वालों हाँ। इसमें हेलन भी अपना खूब कमाल की है।

खुशी एक एहसास है, खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। जी हाँ, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वही जीते हैं जिसको खुद पर खुद विश्वास है। बेस्ट रेडियो स्टेशन इन टाउन, हाँ सुनने वालों, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो जनता के नाम। अजो दिन हाँ न्यूटन स्ट्रीट नंबर 25 पर है। दिन हाँ न्यूटन स्ट्रीट 25 पर जो इनका स्थान है, So viel dingen komen van zelf goed. Zorg dat je leeft. Denk er niet te veel na. Word niet ziek door jezelf te veroordelen. Verteer jezelf niet. De dingen die niet kunnen veranderen, mensen niet kunnen veranderen. Je maakt jezelf kapot. Je dagen, je kansen, je leven, de mensen om je heen. Zoveel dingen komen vanzelf goed. Zorg dat je leeft.

मोनिका, ओ माय डार्लिंग, जिसका नाम मोनिका है तो ये गीत उनके लिए भी पेश किया गया है। साथ ही साथ जिसका नाम मोनिका भी नहीं है तो ये सुंदर सा गीत भी आपके लिए है जो यहाँ से नशर किया गया है। देखो तो फिल्म का नाम है कारवाने दिन ए नसीफ तक, ये सदाबहार गीत जो आपके लिए पेश किया जाता है। शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द में एक नहीं हाथ नहीं, शब्द के नहीं हाथ नहीं पाँव, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के ना तो हाथ है ना तो पाँव, एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। बातों से लोगों को जी जीत सकते हैं और बातों से ही लोगों को भी घायल कर सकते हैं। ऐसा भी है कि तरवेल व दिंगस आउटस्टेलन, तरवेल व दिंगन आउटस्टेलन खातत लेफन फॉर बाई। कुछ नहीं अर्चताल करना सुनने वालों, अगर हो सके तो आज ही कर दो। जो कहते कि जो कल करना है तो आज करो, जो आज करना तो अभी कर डालो, क्योंकि कल का पता किसी को नहीं। और ये भी आपको भी एक शक्ति भी देगा अगर आप ये कहेंगे कि हम कहते हैं कि हाउ देस सेन आउट इन खदाख्तन, हाउ देस सेन आउट इन खदाख्तन, एंड दैट सेन एक वेल है या एक वेल है एक कान है लुप्त में। ये एक चाबी है, पॉजिटिव चाबी है आपके वास्ते। अगर आप कहीं ऐसे हैं जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो और लुक नहीं होते, तो आप ये जरूर से कहना कि एक वेल है एक कान है लुक में। और इसके साथ सुनने वालों, हम आपको लेकर चलते हैं फिल्म शोले की तरफ।

महबूबा महबूबा सुनाए आपको हम आपसे बता दें, आर डे बर्मन, जी हाँ आर डे बर्मन ये गीत को गाए हैं और म्यूजिक भी डायरेक्ट तक की है आर डे बर्मन, जी हाँ सुनने वालों। और जैसे कहा कि फिल्म का नाम है शोले, शोले नहीं थी फैफन से फंत, वही मशहूर वही हिट फिल्म

शादीशुदा घर अनहुलक इस आस अनहाउस। हाँ, ऐसे फर्क लाइक कर सकते हो कि अनहुलक इस आस अनहाउस, तो आप इसका मतलब हम आपको बताएंगे। आस अनलम्प है नित मेर दूत, आपके घर में जो आप एक एक चिराग जो काम नहीं करते, जो नहीं जलते, असलम थैथनिक मेर दूत खायनित अब सुख नार अन्यो हाइस मार ये रिपारेर द लैंप। एक दो चार शब्द है मार इसमें कितना गहराई है। अनहुलक इस आस अन हाइस आस अन लैंप असलम थैथनिक मेर दूत खायनित अब सुख नार अन्यो हाइस मार ये रिपारेर द लैंप। संतोष मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। संतोष मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। आप सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

मुकेश जी ने हमके सुना दी कि तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाई जाग के। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते, और भरोसा एक रिश्ते की सबसे महंगी शर्त है। भरोसा, जी हाँ, भरोसा एक रिश्ता की सबसे महंगी शर्त है।

ये दुनिया नहीं जागीर, किसी के सुंदर सा गीत रफ़ी जी की आवाज़ में हमने सुने। सुने वालों, खूबसूरत है वो हाथ, खूबसूरत है वो हाथ जो किसी के लिए मुसीबत मुश्किल वक्त का सहारा बन जाए।

चाहे रो ना पाए उदित नारायण जी के आवाज़ में हमने सुने। फिल्म का नाम अनारी है सुनने वालों। जिंदगी में ज्यादा टेंशन है, तनाव है, दबाव है, चिंताएं हैं और हमसे नहीं संभल रहा है।

जी हाँ, ये मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में हमने यहाँ से श्रवण की है सुनने वालों कि कल चमन था आज एक सहरा हुआ। फिल्म वक्त से निकल गया ये सुंदर सा गीत। जिंदगी पल पल बदलती है, ये तो सही है कि जिंदगी पल पल बदलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो हर पल फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिलती है।

0: आज वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शै गुलाम, वक्त का हर शै फेराज।
1: जी हाँ, वक्त से दिन और रात, फिल्म वक्त से निकाला गया। ये सुंदर सा गीत, हम क्या कहें, हम तो बेशब्द हो जाते हैं। ये गीत अगर आप सुने तो ये गीत में सभी बातें जो हमें जीवन में और आगे ले जा सकते हैं, अपना जीवन जो हम सुधार सकते हैं, गीतों से हम सुन सकते हैं और अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर। जी हाँ मेरे सुनने वालों, दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती हैं निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं। जी हाँ, रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होठों की मुस्कान बनकर तो कभी आँखों की पानी बनकर।